केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the governing council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का

0: विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति

0: ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आइए प्रातः की इस मंगलमयी बेला में करें उस परम पिता परमेश्वर को नमन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हवेली संगीत के साथ।

ईश्वर के द्वार जो सच्चे मन से आते हैं वो खाली हाथ नहीं बल्कि सुकून लेकर जाते हैं। न धन की चाह न दुनिया का अभिमान, बस मिल जाता है उन्हें उस ईश्वर का आशीर्वाद।

प्रभु का नाम एक ऐसा दीपक है जो अंधेरों में भी राह दिखाता है। जिसके मन में बसता हो उस ईश्वर का नाम, उसका जीवन हमेशा चिंता रहित रहता है।

वो ईश्वर वो बांसुरी वाला जो खाली बांस में मधुर स्वर भर सकता है, वही जीवन के खालीपन को प्रेम भक्ति से हर भी सकता है।

कभी खुशी देकर परखता है तो कभी गम देकर सिखाता है। ईश्वर हर मोड़ पर जीवन का अर्थ समझाता है। हमेशा भरोसा रखिए उसकी रहमत और फैसलों पर। वो जो भी देता है वो हमारे हित में ही देता है। तेरा किया मीठा लगे।

तेरा किया मीठा लागे, उस ईश्वर से धन का दान न मांगे। अगर मांगना ही है तो बल बुद्धि और विद्या का दान मांगे, सच के मार्ग पर चलने की शक्ति मांगे। आइए करें यही प्रार्थना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब जानते हैं कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी उदयपुर से रिले और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, 6:50 पर सुनिएगा खेती में आज, और 7:00 आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमों का। सात बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे गांधी दर्शन, और साथ ही सुबह 8:30 पर आकाशवाणी उदयपुर के दोनों ही चैनल्स पर सुनिएगा ज्ञान और जानकारियों से भरा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में आज दिन की शुरुआत होगी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की जानकारी के साथ। कुछ स्थानीय सूचनाएं होगी, स्मार्ट जीवन के अंतर्गत स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग, इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही फिल्मी फ्राइडे के अंतर्गत इस सप्ताह की रिलीज फिल्में और ओटीटी श्रृंखला की बात होगी, साथ ही आर्थिक मुद्दों पर आधारित फिल्में और उनकी बातें की जाएंगी।

सुबह 9:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे। राजस्थानी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 11 बजे। 11:30 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत। दोपहर 1:05 का वक्त रहेगा महिला जगत कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत जरा सूची का विषय रहेगा सरकार के 2 वर्ष उपलब्धियां। बातचीत का विषय रहेगा बाल अधिकार संरक्षण में महिलाओं की भूमिका और चर्चा का विषय रहेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। कामकाज की बातों में बात करेंगे शहर में आजकल खूबसूरती बढ़ाते इंडोर प्लांट्स। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 1:45 पर। 2:10 पर सुनेगा विकास चर्चा, जिसमें आज का विषय रहेगा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। कृषि जगत का वक्त रहेगा दोपहर 2:30। किसान दी बात में आज बातचीत होगी खेती में बाल श्रम रोकने की जिम्मेदारी। राजस्थानी गीतों के साथ साथ जानकारी होगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी युवाणी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आज युवा और उद्योग जगत के अंतर्गत बातचीत की जाएगी। शौर्य गाथा के अंतर्गत भी आपको जानकारी दी जाएगी नीरज भानोत की। न्यू रिलीज फिल्मों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही होगी आज के इतिहास की बात, खेल जगत की कुछ बातें और जानकारी होगी शेयर मार्केट की। इसी के साथ आप सभी को जानकारी दी जाएगी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं शाम 6:05 पर। इसी के साथ जिले की चिट्ठी और हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेगा शाम 6:30 पर और 6:40 पर। और इसी के साथ शाम 7 बजे का वक्त रहेगा खेती और घर कार्यक्रम का, जिसमें होगी चौपाल की बात, खरीफ फसल पूर्व खेत प्रबंधन, साथ ही राजस्थानी गीतों के साथ जानकारी दी जाएगी एग्रोमेंट एडवाइजरी की। राजस्थानी गीतों के साथ साथ ही जानकारी का विषय रहेगा कृषि में बाल श्रम उन्मूलन और साथ ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर भी बातचीत की जाएगी। शाम की सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8 बजे। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10 बजे। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हो चुके हैं और अब वक्त हो चुका है श्री रामचरित मानस गान का। संगीत सतीश भाटिया का है।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने सोलहों

श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती में आज।

में आज हुआ वाला हंगले किसान भाई बहना ने नंदू भाईरो राम राम सा। देखो किसान भाई बहनों, जून रो महीनो चल रो है न अणी टाइम पे आपने कशा कृषि संबंधी कार्य करना है अंडे बारे में बात करा और सब पहली फसला रे उत्पादन री बात करा। तो देखो खरीफ फसला में खास तौर पे दलहनी फसला में कातरे रो प्रकोप वेवेसा कीट री लट वाली अवस्था ही फसला ने नुकसान पहुंचावे अणी कीटू पतंगा ने नष्ट करवारे बाते प्रकाश पास रो उपयोग अभी कर सका सा। अंडे लिए मानसून री वर्षा शुरू हुए खेत री मेड़ा पे और चरागाह पर आपने गैस री लालटेन या बल्ब जलाना है और अंडे नीचे 5% मिट्टी रो तेल पानी में मिलाई कणी बड़ा बर्तन में रख देना है सा। प्रकाश पर कातरा रे पतंगा आकर्षित वेगा और नीचे मिट्टी रे तेल में मिलिन पानी में गिरिन मर जाएगा सा। कातरे

छोटी अवस्था री लटा फसल में दिखता ही अपने क्यूनोलोफॉस 1.5% चून 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर ही दरू फसल पर भुरकाव करनो हिसा। कपास में सफेद मक्खी, ग्रे विविल, जेसिड और थ्रिप्स नियंत्रण रहवाते कीड़ा दिखाई देवा पर आपने डाई मिथियोड 30 EC दवा जाहे 1 लीटर प्रति हेक्टर दरू गोल बने छिड़काव करनो हैसा। क्षारीय और लवणीय मिट्टी में बोवों पहली बाजरा रे बीज ने 1% सोडियम सल्फेट रे गोल में 4 घंटा तक आपने भिगोइन साफ पानी में धोइन छाया में हुकावर बाद बीज ने कवक नाशियों उपचारित करीन पचे बोवनो हैसा। अशो उपचारित बीज खारी मिट्टी में बोवों अंकुरन ज्यादा वेगा सा। सिंचित मूंगफली री बुआई रो उपयुक्त समय जून माह रे प्रथम सप्ताह रे दूसरे सप्ताह तक वेवेसा। मिट्टी री जांच रे आधार पर अंतिम जुताईयों पहली प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम मिलानो है। मूंगफली रे खेत में प्रति हेक्टर 60 किलोग्राम फास्फेट और 15 किलो नत्रजन, 130 किलोग्राम DAP या 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलो यूरिया बोयूं पहली नायले रे उरिन देनो है सा। फास्फेट तत्व की पूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट SSP द्वारा क्यों जानो ज्यादा फायदेमंद रहे सा। ज्वार में तना मक्खी कीट नियंत्रण रहवाते मानसून री पहली वर्षा रे व्यवहारे 1 सप्ताह रे अंदर ही इस बुआई आपने करनी है। देर बोई जावे वाली फसल में कार्बोफ्यूरॉन 3% कण 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर दरू उम्रों में डालिन बुआई करनी है सा। अबे आप ही बागवानी री बात करा तो देखो नींबू वर्गीय फलदार पौधा में फल गिरवारी समस्या री रोकथाम वाते प्लेनोफिक्स हार्मोन रो 3 मिलीग्राम प्रति 15 लीटर पानी रे घोल बनाइन छिड़काव करनो चावे सा। बेर में काट छाट करनी है जनू कही है कि नया प्रोहोर में अधिक संख्या में फूल और फल आएगा सा। काट्या थका स्थान पर फफूंद नाशी बोर्डेक्स मिश्रण रो लेप करनो चावे सा। नींबू वर्गीय पौधा में पर्ण खनक व सिट्रिला कीड़ा री रोकथाम रे वाते एसीफेंट 75 AP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या दाई मिठियोर 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी दर गोल बनाइन छिड़काव करनो चावे सा। नींबू में किंकर रोक रे बचाव रे वाते बॉडी मिश्रण या स्ट्रेपोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा 4-5 लीटर पानी रे घोल बनाइन 20-25 दिना रे अंतर में छिड़काव करनो चावे सा। छायादार व शोपकारी वक्षा ने लगावा रे वाते फलदार वक्षारी तरह रेखांकन करीन 5 गड्ढा खुदाई करवारो कार्य करनो है सा। आंवला और बोरेक्स रो 0.4% व जिंक सल्फेट रो 0.2% रो गोल बनाइन छिड़काव अनि टाइम पे कर सका सा। अबे आप ही सब्जियां री बात करा तो देखो भिंडी री खरीफ फसल री बुआई जून माह में आपने करनी है। भिंडी री अपराजिता, शक्ति, अर्का अभय, पूसा मखमली, पूसा सावनी, अर्का अनामिका किस्मारो 10-12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर दरू बुआई करनो है सा। कुष्मांड कुल री सब्जियां में कद्दू, बीटल एवं हाड़ा बीटल री रोकथाम रे वाते डाई मिथियोड 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर दरू छिड़काव करनो चावे सा। फूल गोभी री अगेती किस्म अल्ली कुवारी रो 650 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर दरू नर्सरी तैयार करनी है। बीजा री बुआई उठी थकी क्यारी में करनी है और थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम दरी बीज ने उपचारित करनो चावे सा। टमाटर री वर्षाकालीन फसल री तैयार पौधरो खेत में 75 सेंटीमीटर री दूरी पर रोपण करनो चावे। संकर किस्मा में गोबर री खाद 300-350 क्विंटल, नत्रजन 90 किलो, फास्फोरस 120 किलो और पोटाश 80 किलो प्रति हेक्टर दरू देनो है सा। रिंगणा री वर्षाकालीन फसल री तैयार पौधरो रोपण 60 सेंटीमीटर री दूरी पर अपने करनो है। खेत री तैयारी रे टेम पे गोबर री खाद 120-150 क्विंटल, नत्रजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर दरू देनो है सा। मरचा री तैयार की दी थकी पौधरो 45-45 सेंटीमीटर री दूरी पर रोपण करनो चावे। अंतिम जुताई रे टेम पे पहली अपने गोबरी खाद 150-180 क्विंटल, नत्रजन 35 किलो, फास्फोरस 48 किलो और पोटाश 50 किलो प्रति हेक्टर दरू देनो है सा। कुकर बीट, बैंगन और टमाटर में माइट्स री रोकथाम रेवाते इथियोन 1 लीटर प्रति हेक्टर दरू छिड़काव करनो है सा। कुष्मांड कुलरी सब्जियां में फल मक्खी री रोकथाम रेवाते मेलाथियन 50 EC या डाई मिथियोड 30 EC 1 मिलीलीटर दवारो प्रति लीटर पानी में प्रति हेक्टर री दरू छिड़काव करनो है सा। अणु हरा तेला या मोयलारो नियंत्रण भी वही जागा सा। मूली री पूसा चेत की किस्म री बुआई करनी है। अंडी 10-12 किलोग्राम प्रति हेक्टर दरू बीज री आवश्यकता अपने
पड़ेगा सा। अब आप ही फूलारे उत्पादन रिवाद करा तो वर्षाकालीन मौसमी फूल जैसे कि गेंदा, बालसम, जीनिया, सूरजमुखी, कॉक्स कॉम्ब आदि नर्सरी एनी टाइम पे आपने तैयार।

तैयार करनी है। तैयार नर्सरी में जा रहे हो नियमित सिंचाई करते रहनो है और खरपतवार भी अपने निकालते रहनो है सा। क्यारिया में लगी थकी गुलदाउदी रा सकर्स में अलग अपने लगावना है। गेंदा री वर्षाकालीन फसल री पौध रो खेत में रोपण करनो है। कतारारे बीच में 60-90 सेंटीमीटर और पौधारे बीच में 45-60 सेंटीमीटर या अपने दूरी रखनी है। रजनीगंधारी फसल में प्रति स्पाइक फूलारी संख्या और स्पाइक री लंबाई बढ़ावारे वाते GA3 जिब्रेलिक एसिड 50 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी रे घोल में वणेन अपने परणीय छिड़काव करनो है। अब आप मुर्गी पालन री बात करा तो मुर्गिया ने गर्मियों बचावे वाते दीवार पर घास री टाटी बांधिन पानी रे छिड़े आप मारी सका जणियो छंडक बनी रहेगा सा। दोपहर टाइम में पानी में ग्लूकोज विटामिन और लू वचवारे वाते इलेक्ट्रोलाइट्स अपी डाली सका सा। किसान भाई बहनों अबे अपी चारा फसला री बात करा तो चारा रे वाते ज्वार लोबिया और बहु कटाई वाली चरी री बुआई एनी टाइम पे अपी कर सका। वर्षा नियवारी दशा पे पले वो अपी देन बुआई भी कर सका सा। लोबिया रे वाते 35-40 किलोग्राम, ज्वार रे वाते 40-45 किलोग्राम और बहु काटन वाली चरी रे वाते 20-35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर री अपने आवश्यकता पड़ेगा सा। चारा री गुणवत्ता और उपज बढ़ावा रे वाते ज्वार रे बीज रे साथ साथ आपी 10-12 किलोग्राम लोबिया रो बीज भी प्रति हेक्टर आपी मिले सका सा। या तो देखो किसान भाई बहनों अनि टाइम पे आपने कशा कशी संबंधी कार्य करना है वनडे बारे में जानकारी दी सा। अब आपने कार्यक्रम रो टाइम खत्म भी रो है तो किसान भाई बहनों आज्ञा दो सा। राम राम सा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती में आज, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा था।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए सदाबहार नगमे।

वाकई में हर नई सुबह नई उम्मीदों का पैगाम लेकर आती है। खुशियों की किरणें हर ओर छा जाती हैं, इसीलिए हर सुबह का स्वागत मुस्कुरा कर करना चाहिए, क्योंकि हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। साज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे देवकी पंडित की आवाज़ में, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए अमित कुमार की आवाज़ में, संगीत आरडी बर्मन का है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, फिल्म का नाम तेरी कसम।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत साहिर लुधियानवी जी का लिखा हुआ, आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम जमीर।

ये अगला गीत है धड़कन फिल्म से, आवाज एक बार फिर से किशोर दा की है, संगीत रवि का। माफ कीजिएगा, ये गीत है लता जी और किशोर दा की आवाज में।

खूबसूरत फूलों का जिक्र करता ये गीत था देवता फिल्म से सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं किशोरदा की आवाज़ में धड़कन फिल्म का गीत, संगीत रवि का है।

खूबसूरत वादियों में ले जाता ये गीत था किशोरदा की आवाज़ में धड़कन फिल्म से सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं एसटी बर्मन के संगीत से सजा गीत आराधना फिल्म से। आवाज़ें रफ़ी साहब और आशा भोसले की है। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: रुक जा गुड्डू।
1: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार जीत जाते तो
3: पापा होमवर्क नहीं कराते।
1: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: को तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना?
6: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

वाकई में तुमको सलाम है। फूल जो हमें सिखाते हैं झुक कर भी खिलना और कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराना। ये गीत आप सुन रहे थे आशा फिल्म से लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी को सुनवा रहे हैं हाथी मेरे साथी फिल्म से। आवाज़ें किशोरदा और लता जी की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे हाथी मेरे साथी फिल्म से। सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी को सुनवा रहे हैं दो जासूस फिल्म से। संगीत रविंद्र जैन का है, इस गीत को लिखा भी रविंद्र जैन ने ही है। आवाजें हैं लता जी और शैलेंद्र की।

लता जी और शैलेंद्र के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम बस यहीं तक। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 7:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आबो हवा के अंतर्गत जानते हैं जल संरक्षण के उपाय। जल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। जल के बिना मनुष्य, पशु पंछी और पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं। बढ़ती जनसंख्या, जल का अधिक उपयोग और प्रदूषण के कारण आज जल संकट बढ़ चुका है। जल संरक्षण का मतलब है पानी का सही उपयोग करना और उसे व्यर्थ होने से बचाना। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए। खेती में भी जल की बचत करने वाली तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन के अंतर्गत बारिश के पानी को टैंक या जमीन के अंतर्गत जमा करके उसे उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग करें, जिसमें खेती में बूंद बूंद पानी पौधों की जड़ों पर पहुंचकर पानी की बचत होती है। इसी के साथ हम स्मार्ट जल प्रबंधन भी कर सकते हैं। सेंसर और आधुनिक तकनीक से पानी के उपयोग की निगरानी की जा सकती है। अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों और उद्योगों से निकलने वाले पानी को साफ करके दोबारा उसे उपयोग में लाया जा सकता है। जल स्रोतों का पुनर्जीवन भी किया जा सकता है। तालाब, कुएं और नदियों की सफाई करके और उनका संरक्षण करके, छतों पर ग्रीन कवर और पौधारोपण करके वर्षा जल को रोकने और पर्यावरण संतुलन में ये काम मदद करता है।

कम पानी खर्च करने वाले नल और शावर और तकनीकों का उपयोग करके पानी को बचाया जा सकता है। इसी के साथ लोगों को जल बचाने के लिए शिक्षित करें और प्रेरित करें ताकि जल जन जागरूकता अभियान के जरिए हम पानी की बचत कर सकें। यदि हम सभी मिलकर आज जल की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जल बचाए और प्रकृति की रक्षा करे। इसीलिए कहा जाता है कि हर बूंद की कीमत समझे, जल बचाए और भविष्य को बचाए। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आबोहवा के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे जल संरक्षण की। आइए अब सुने गांधी दर्शन, वाचक स्वर दिलीप शर्मा के हैं।

कांति दर्शन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को दिलीप शर्मा का नमस्कार। कांति दर्शन कार्यक्रम में गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से संस्मरण। आज का संस्मरण धर्म की जांघी। छठे सातवें से शुरू करके 16 साल का होने तक पढ़ा, पर पाठशाला में कहीं भी धर्म शिक्षा न मिली। कहना चाहिए कि जो वस्तु शिक्षकों से अनायास ही मिलनी चाहिए थी वह न मिली, पर वातावरण में कुछ न कुछ तो मिलती ही रही। यहां धर्म का उदार अर्थ लेना चाहिए। धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण मुझे हवेली जाने का मौका अवसर मिला करता था, पर उसके लिए मेरे मन में श्रद्धा न उपजी। मंदिर का वैभव मुझे न रुचा, पर मंदिर से न मिलने वाली चीज दाई से मिली। वह कुटुंब की पुरानी नौकरानी थी, उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। पहले कह आया हूं कि मैं भूत प्रेत आदि से डरता था। रंभा ने मुझे बताया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम की अपेक्षा रंभा पर अधिक श्रद्धा थी, इसलिए मैंने बचपन में भूत प्रेत के भय से बचने को राम नाम का जप आरंभ किया। वह अधिक दिन न चला, पर बचपन में बोया हुआ बीज व्यर्थ नहीं गया। आज मेरे लिए राम नाम अमोघ शक्ति है, उसका कारण मैं रंभाबाई के बोए बीज को मानता हूं। इसी बीच मेरे एक चचेरे भाई ने, जो रामायण के भक्त थे, हम दोनों भाइयों के लिए राम रक्षा स्त्रोतों का पाठ सीखने का प्रबंध कर दिया। हमने उसे कंठस्थ कर लिया और प्रातःकाल स्नान के बाद नित्य पाठ का नियम बनाया। पोरबंदर में रहने तक तो यह निभा, राजकोट के वातावरण में जाता रहा। इस क्रिया में भी विशेष श्रद्धा नहीं थी। उक्त बड़े भाई के प्रति आदर और कुछ राम रक्षा स्त्रोत को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने के अभिमान के कारण उसका पाठ चलता रहा। पर जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का कुछ काल

पोरबंदर में बीता था। यहां वह राम जी के मंदिर में नित्य रात को रामायण सुना करते थे। सुनाने वाले थे रामचंद्र जी के एक परम भक्त बिलेश्वर के लाधा महाराज। उनके विषय में कहा जाता है कि उन्हें कोट हो गया था। उसकी दवा करने के बदले उन्होंने बिलेश्वर के बिल्व पत्र, जो महादेव जी पर से उतरते थे, कोट वाले अंग पर बांधे और केवल राम नाम का जप चलाया। इससे उनका कोट जड़ से जाता रहा। यह बात सच हो या न हो, हम सुनने वालों ने उसे सच माना। यह भी सही है कि लाधा महाराज ने जब कथा आरंभ की थी तब उनका शरीर बिल्कुल निरोग था। लाधा महाराज का कंठ मधुर था। वह दोहे चौपाई गाकर उसका मतलब समझाते थे, स्वयं उसके रस में लीन हो जाते थे और श्रोताओं को भी लीन कर देते थे। मेरी अवस्था इस समय कोई 13 साल की रही होगी, पर यह याद है कि मुझे उनकी कथा में खूब रस मिलता था। यह रामायण श्रवण रामायण पर मेरे आत्यंतिक प्रेम की बुनियाद है। मैं आज तुलसीदास जी के रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं। कुछ महीने बाद हम राजकोट आए। वहां ऐसी कथा का प्रबंध नहीं था। अलबत्ता एकादशी को भागवत की कथा हुआ करती थी। मैं उसमें कभी कभी बैठता था, पर कथावाचक उसमें रस न उपजा सके। आज मैं देखता हूं कि भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने तो उसे गुजराती में बड़े रस के साथ पढ़ा है, पर मेरे 21 दिनों के उपवास में जब भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के श्रीमुख से मूल संस्कृत के कितने ही अंश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब मुझे मालूम हुआ कि बचपन में उन जैसे भागवत भक्त के मुंह से भागवत न सुना होता तो उस पर भी मेरी गाढ़ प्रीति बचपन में ही जम जाती। उस वाय में पड़े शुभाशुभ संस्कारों की जड़ बड़ी गहराई तक पहुंच जाती है। इसे मैं खूब अनुभव करता हूं और इस कारण कितने ही उत्तम ग्रंथों के सुनने का सौभाग्य मुझे उस उम्र में प्राप्त न होना आज खलता है। राजकोट में मुझे अनायास सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय के प्रति आदर भाव रखना सीखा, क्योंकि माता पिता हवेली जाते, शिवालय जाते और राम मंदिर भी जाते, और हम भाइयों को भी ले जाते या भेजा करते। इसके सिवा पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से कोई न कोई सदा आते रहते। पिताजी उन्हें भिक्षा देकर सत्कार करते थे। वह पिताजी से धर्म संबंधी तथा व्यावहारिक चर्चा किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे, जो अपने अपने धर्म के बारे में चर्चा किया करते और पिताजी उनकी बातें आदर और रस लेकर सुनते थे। इन चर्चाओं के समय नर्स होने के कारण मैं प्रायः उपस्थित रहता था। इस सारे वातावरण का असर मेरे ऊपर यह हुआ कि सब धर्मों के प्रति मेरे मन में संभाव उत्पन्न हो गया। इस प्रकार मेरे मन में अन्य धर्मों के प्रति संभाव तो आया, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मुझमें ईश्वर के प्रति कुछ आस्था थी। इसी समय पिताजी की पुस्तकों में मुझे मनुस्मृति का उल्था मिला। उसमें जगत की उत्पत्ति आदि की बातें पढ़ी, उन पर श्रद्धा नहीं जमी, उल्टे कुछ नास्तिकता आई। मेरे दूसरे चाचा के लड़के की, जो अभी भी जीवित है, बुद्धि पर मुझे विश्वास था। उनसे मैंने अपनी शंकाएं कही, पर वह मेरा समाधान न कर सके। उन्होंने उत्तर दिया, बड़े होने पर तुम स्वयं इन प्रश्नों को हल कर लोगे, बालकों को ऐसे प्रश्न न करने चाहिए। मैं चुप रहा, मन को शांति न हुई। मैंने यह कहकर मन को समझा लिया कि किसी दिन बुद्धि खुलेगी, तब अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा। मनुस्मृति के पढ़ने से मुझे उस समय अहिंसा की शिक्षा तो नहीं ही मिली, पर एक बात ने मन में जड़ जमा ली। यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है।

सत्य की खोज तो करनी ही है। दिन दिन सत्य की महिमा मेरी निगाह में बढ़ती गई, सत्य की व्याख्या विस्तार पाती गई और अब भी पाती जा रही है। नीति विषयक एक छपाई ने भी दिल में घर कर लिया। अपकार का बदला अपकार नहीं बल्कि उपकार ही हो सकता है, यह बात जीवन सूत्र बन गई। उसने मेरे मन पर राज करना आरंभ कर दिया। अपकारी का भला चाहना और करना इसका अनुरागी बन गया, उसके अगणित प्रयोग किए। कांति दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में इतना ही। अगला अंक इसी दिन इसी समय, तब तक इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी दर्शन, वाचक स्वर थे दिलीप शर्मा के।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज़। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा।

0: तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
0: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल

0: एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे।

0: भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उपमंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता

0: लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना, हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the Centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
4: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
5: In the area, we see immense potential of hydrocarbon at the initiative of Union

0: मौसम ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, पतझड़ में सब्र रखना, बरसात में यादों में भीगना, सर्द हवाओं में खुद को संभालना और बहारों में मुस्कुराना। और ऐसी ही मुस्कुराहट के साथ एक नया दिन आप सभी का इंतजार कर रहा है। नए दिन में नमस्कार उदयपुर के नए अंक के साथ आज मैं हूँ रश्मि और मेरे साथ हैं स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। और मीनाक्षी, आज है डिजिटल और फन फ्राइडे, तो आज डे स्टार्ट के अंतर्गत कुछ स्थानीय सूचनाएं होंगी। साथ ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आज सुबह 9:10 पर हमारे श्रोताओं को एक विशेष बातचीत भी सुनवाएंगे और स्मार्ट लिविंग के अंतर्गत बात करेंगे स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग।
1: फिल्म में उनका जिक्र भी होगा, तो ये सब रहेगा आज के नमस्कार उदयपुर में। फिलहाल शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ।

0: चलिए तो खूबसूरती से जीने के लिए कुछ लाइव अपडेट्स हमारी जिंदगी में, हमें हमेशा अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो आज क्या कुछ खास है मीनाक्षी?
1: बिल्कुल रश्मि, जैसे तुमने गीत सुनवाया ना कि दुनिया में, मैं कहना चाहूंगी कि महान ऐसी विभूतियों ने जन्म लिया है जो एक जन्म में ऐसे उत्कृष्ट कार्य कर जाते हैं, वीरता का परिचय देते हैं कि इतिहास रच देते हैं और जन्म को सार्थक बना देते हैं। और उन्हीं में शुमार होता है मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म और उनका नाम। उनकी 486वीं जयंती मेवाड़ में शौर्य, स्वाभिमान, सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाई जा रही है। जहां कल हकीम खां सूरी और महाराणा प्रताप की मित्रता को कविताओं और गीतों के जरिए याद किया गया, तो वहीं गोगुंदा स्थित ऐतिहासिक मायरा की गुफा में प्रताप से जुड़े इतिहास को नमन किया गया। 17 जून को भव्य रूप में मुख्य आयोजन होगा, जिसके लिए गांधी ग्राउंड में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और 10 जून से विविध कार्यक्रम शहर भर में आयोजित किए जा रहे हैं। भुवाणा चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा की आरती कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गणगौर घाट पर 486 दीप प्रज्वलित किए गए। गोगुंदा स्थित उनकी राजतिलक भूमि पर प्रतिमा का दुग्धाभिषेक और माल्यार्पण कर उन्हें त्याग और उनके शौर्य को नमन किया गया। इसी क्रम में आज राणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रतिमा का पूजन होगा। गोवर्धन सागर स्थित पन्नाधाय स्मारक पर स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही रेती स्टैंड स्थित महान योद्धा और नायक राणा पुंजा को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। राणा पुंजा तो

0: जानते ही होंगे आप, गोरिल्ला युद्ध में निपुण राणा पुंजा के अद्भुत नेतृत्व में भील तीरंदाजों की विशाल सेना ने हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप का साथ देकर मेवाड़ की रक्षा की।
1: बिल्कुल, और कुछ और अपडेट्स की बात करें मीनाक्षी, तो रिनेट यूजी 2026 में शामिल होने जा रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली ने स्क्राइब रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्वयं चयनित स्क्राइब की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये व्यवस्था न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। अभ्यर्थी 12 जून यानी आज रात्रि 11:50 तक स्क्राइब की डिटेल्स अपलोड कर सकेंगे।
0: बिल्कुल, और आज से यानी 12 जून से 15 जुलाई तक शहर में शहरी सेवा शिविर लग रहे हैं, जिनमें विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएंगी। मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण होगा। वार्ड 1, 2, 3 और 80 के लिए निगम परिसर में शिविर लगाए जाएंगे और विशेष शिविर UDA में भी लगेंगे।
1: और इसी के साथ बात करें, कार बाइक सहित अन्य वाहनों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अब बिना OTP के जारी नहीं होगा। NIC ने 9 जून से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत वाहन सॉफ्टवेयर में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पहले किसी भी मोबाइल नंबर पर OTP लेकर PUCC जारी हो जाती थी, अब केवल वाहन डेटाबेस में दर्ज मोबाइल नंबर पर ही OTP जाएगा और OTP सत्यापन के बाद ही प्रमाण पत्र जारी होगा।
0: और अब बात मौसम की कर ली जाए रश्मि, तो झुलसाने वाली गर्मी से परेशान उदयपुर वासियों के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है, हल्की बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है और 15 जून तक प्री मानसून के आगमन के भी आसार है।
1: बिल्कुल, देखिए इसी के कारण तापमान भी थोड़ा सा कम हुआ है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम रहा 27.5 डिग्री सेल्सियस।

0: तो चलिए, अगर फलसफा ज़िंदगी का सीखना हो तो आपको स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। और आज स्मार्ट लिविंग के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग।
1: बिल्कुल रश्मि, तो देखो आज की दुनिया में स्मार्टफोन चलाने वालों की कोई कमी नहीं है। एक समय था जब लोगों के पास ना जो फ़ोन हुआ करते थे उसमें दो तरह की ही मुख्य सुविधाएं हुआ करती थी, एक कॉल करने की और दूसरी मैसेज भेजने की। और अब तो स्मार्टफोन का ज़माना है जिसमें तमाम तरह की सुविधाएँ मिलती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहद ही आसान बनाती हैं। और आप में से और हम में से अधिकतर लोग स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करते हैं।
0: बिल्कुल, हम स्मार्टफोन का यूज़ तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो अगर पूरे दिन में एक बार अगर मैं सोशल मीडिया पर चक्कर लगाने की सोचती हूं तो मेरा एक घंटा बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि उस स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज़ करें। आप शिक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएँ उसके अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं, ई पुस्तकों को आप काम में ले सकते हैं, ज्ञानवर्धक सामग्री आपको मिल सकती है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो कैलेंडर है, रिमाइंडर है, नोट्स एप्लीकेशंस हैं, साथ ही परिवार मित्रों से जुड़े रहने के लिए संचार माध्यमों का हमें संतुलित उपयोग करना चाहिए। उसी के साथ आजकल देख लीजिए, डिजिटल दुनिया है तो डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का भी सुरक्षित तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, कॉल और चैटिंग के अलावा वीडियो देखने से लेकर गेम खेलने तक हर तरह की सुविधा आजकल स्मार्टफोन में मिलती है। लेकिन स्मार्टफोन बस यहीं तक सीमित नहीं होते, बल्कि इसमें बहुत से ऐसे कमाल के फीचर्स होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि हम इन्हें ऑटोमेटिक साइलेंट मोड पर भी रख सकते हैं। अगर आप सिनेमा हॉल या लाइब्रेरी में बैठे हैं तो आपके फोन आप जो है साइलेंट मोड पर चलाया जा सकता है। और अगर आप घर पर अपने फोन को हमेशा अनलॉक रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी सिक्योरिटी लोकेशन की सेटिंग में जाकर सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके हिसाब से मैसेज की सेटिंग कर सकते हैं ताकि अगर ड्राइविंग के दौरान आपको कोई कॉल करे तो उसे रिप्लाई मिल जाएगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं और वो डिस्टर्ब ना करें। इसके अलावा देखो, आप फोन के कैमरे और एप्स का उपयोग करके बिल, रसीदें, जरूरी दस्तावेज पीडीएफ में हम बदल सकते हैं डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करके, और अपनी सभी महत्वपूर्ण कागजात जैसे आधार, पैन कार्ड डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा एप्स का उपयोग करके टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं और टाइपिंग की बजाय बोलकर हम तेजी से उसमें भी नोट्स बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं मीनाक्षी, तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए, योग और व्यायाम के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। उसके अलावा आप ट्राई की D&D सेवा एक्टिव रख सकते हैं। इसकी सेटिंग्स के लिए मैसेज बॉक्स में जाएं और बड़े अक्षरों में लिखें फुली ब्लॉक, लिखकर 1909 पर भेज दें। इसके बाद कमर्शियल स्पैम कॉल आने बंद हो जाएंगे और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में डू नॉट डिस्टर्ब का बटन भी होता है। इसी के साथ आप व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड जो है वो बंद कर सकते हैं ताकि जितनी भी आपके पास पिक्चर्स आती है या वीडियोस आती हैं वो अपने आप डाउनलोड नहीं हो। उसी के अलावा आपने जैसे के लिए बैंकिंग के लिए बताया, तो अपने मोबाइल फ़ोन में बैंकिंग ऐप्स और गूगल पे या फ़ोन पे जैसे पेमेंट ऐप्स पर फिंगरप्रिंट्स या फेस लॉक आप अवश्य लगाएं ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बच सके।
1: और देखो, हम मैप्स के जरिए हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, लाइव ट्रैफिक अपडेट्स भी हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा हम फोन के जरिए शॉपिंग तो करते ही हैं, है ना, लेकिन हम कन्वेंस की बुकिंग हुई या टिकट्स की बुकिंग, चाहे हमें थिएटर्स की बुकिंग करनी हो या टूर की, होटल्स की करनी हो, हम हर तरह की बुकिंग जो अपने फोन के माध्यम से कर पाते हैं। इसके अलावा अपने कदमों के हम कितने स्टेप्स चले हैं, नींद को ट्रैक करने के लिए फिट और हेल्थ उपयोग का ऑप्शन लेकर हम आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर्स से भी ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। और हम घर को भी स्मार्ट बना सकते हैं। देखो तो आजकल हर चीज हम फोन से कंट्रोल कर पाते हैं, फोन चलाना हो, एसी चलाना हो, पंखा चलाना हो, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देखते हो अगर घर में आजकल सिक्योरिटी के हिसाब से या शॉप्स पर कैमरे लगाए जाते हैं तो वो भी लाइव आपको आपके फोन में पिक्चर्स और वीडियोस दिखते रहते हैं।
0: बिल्कुल, आपने घर की बात की तो खासकर जब पानी डुल रहा होता है तो मोटर बंद करने के लिए भी आजकल स्मार्टफोन का यूज़ किया जाता है। लेकिन देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज़ करना चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट की वजह से आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत तेज़ी से फैल रही है। प्लेटफॉर्म तक आसान पहुँच के कारण अब जुआ खेलना लोगों के लिए आम बात हो गई है। तो इस तरह की चीज़ों में संलग्न ना हो

0: मीनाक्षी, मुझे लगता है स्मार्टफोन का एक नुकसान ये भी है कि हम किसी अपने से बहुत सारी बातें अपनी साझा कर लेते हैं और कई बार किसी के बारे में बहुत सारा जान लेते हैं ना, तो हमारा ब्रेकअप भी हो जाता है
1: लेकिन हम ब्रेकअप नहीं, हम पैचअप करने में यकीन करते हैं, है ना। तो अब देखो फिल्मी शुक्रवार की बात करते हैं और आज खास जिन फिल्मों की बात होगी वो आर्थिक घटना और वित्तीय घोटालों पर आधारित हिंदी फिल्में रही हैं जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रही हैं। और इन फिल्मों में शेयर बाजार की हलचल से लेकर भ्रष्टाचार व्यवसायिक संघर्षों को बखूबी दर्शाया गया, दिखाया गया, जिनमें प्रमुख फिल्में जो रहती हैं बाजार 2018 में जो रिलीज हुई, सैफ अली खान अभिनीत यह फिल्म मुंबई के हाइट स्टेक शेयर बाजार और ट्रेंडिंग को दुनिया पर उसकी आधारित है और इसमें पैसे की भूख, सत्ता के खेल और जोखिम भरी व्यापारिक रणनीतियों को दिखाया गया है।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ रॉकेट सिंह फिल्म है जो कि सेल्समैन ऑफ द ईयर, इसका विषय रहा मार्केटिंग, बिक्री और व्यावसायिक नैतिकता के ऊपर। फिल्म थी ग्राहक विश्वास और ईमानदारी को सफलता का आधार बताती है ये फिल्म।
1: इसके अलावा स्कैम जो 1992 में रिलीज हुई, द हर्षद मेहता स्टोरी 2020

0: की ये फिल्म 1992 के स्कैम पर आधारित, हालांकि ये एक वेब सीरीज है, लेकिन 1990 के दशक के सबसे बड़े भारतीय शेयर बाजार घोटाले को समझने के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और हर्षद मेहता के उदय और पतन की सच्ची कहानी है। इसके बाद निर्देशक तुषार हीरा नंदानी ने स्कैम 2 भी बनाई। 2003 द तेलगी स्टोरी, ये फिल्म भारत के सबसे बड़े स्टैंप पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी के जीवन पर आधारित।
1: बिल्कुल, इसी के साथ कॉर्पोरेट फिल्म जो है वो कॉर्पोरेट जगत, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और नैतिक चुनौतियों को दर्शाती है। व्यापार में लाभ और नैतिकता के बीच संतुलन पर ये फिल्म प्रश्न उठाती है।
0: और हर्षद मेहता घोटाले से ही जुड़ी एक और फिल्म आई थी द बिग बुल 2021 में, ये अभिषेक बच्चन की फिल्म वित्तीय घोटालों और स्टॉक मार्केट की हेराफेरी से प्रेरित रही।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ श्रीकांत फिल्म आई जो कि श्रीकांत बोला के जीवन पर आधारित थी, जिसमें सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच सफलता की कहानी को दिखाया गया।
0: वन इडियट हिसाब बराबर 2013 और 2025 की ये फिल्में वित्तीय साक्षरता और घोटालों के खिलाफ आम आदमी के संघर्ष और आर्थिक प्रबंधन को रोचक तरीके से पेश करती हैं। इसके अलावा 2018 की रेड और इसके बाद इसी की सीक्वल आई थी रेड 2 2025 में। ये फिल्म 1980 के दशक में लखनऊ में हुए वास्तविक और बेहद हाई प्रोफाइल आयकर छापे पर आधारित थी, जो पहली पार्ट थी, और इसकी जो अगली कड़ी आई IRS अधिकारी अमय पटनायक एक और बड़े आर्थिक अपराध का इसमें पर्दाफाश करते हैं।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, और देखिए केवल नए दौर में नहीं बल्कि पुरानी फिल्मों में भी हम देखें तो दो बीघा जमीन, मदर इंडिया, नया दौर, प्यासा, काला बाजार जैसी, गोदान जैसी फिल्में हैं जिसमें किसानों के जीवन के बारे में बताया गया और कर्ज और सामाजिक और आर्थिक शोषण के बारे में बताया गया। इसी के साथ अब लास्ट में हम जिक्र करते हैं गुरु फिल्म का, जो कि भारतीय उद्योग जगत और उद्यमिता पर आधारित थी। बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की एक कहानी है, तो इसी का गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: चलता है चलता। बिल्कुल मेहनत से कमाया जाता है पैसा। और अब बात करें हम कुछ न्यू रिलीजेस की, तो मीनाक्षी क्या कहना चाहूंगी?
1: बिल्कुल, जल्दी से अपने श्रोताओं को अपडेट दे देते हैं कि थिएटर में आज जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, गवर्नर मनोज वाजपेयी अदा शर्मा स्टारर थ्रिलर फिल्म है, हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म, और मैं वापस आऊंगा दिलजीत दोसांझ की इमोशनल ड्रामा फिल्म भी 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
0: बिल्कुल, इसी के साथ है जवानी तो इश्क होना है ये फिल्म भी, और उसके अलावा भारत भाग्य विधाता कंगना रानौत की ये जो फिल्म है, ये 26/11 मुंबई हमलों के दौरान अस्पताल कर्मियों के साहस पर आधारित ये फिल्म है, जो कि आज ही रिलीज होने वाली है। और अगर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो भूत बंगला, जो कि अक्षय कुमार की हॉरर फिल्म है, जो कि आज नेटफ्लिक्स पर यानी 12 जून को रिलीज होने वाली है।
1: सूर्या और त्रिषा कृष्णन की कुरुप्पु फिल्म फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, तमिल के साथ साथ हिंदी डब वर्जन में भी स्ट्रीम होगी।
0: बिल्कुल, तो ये थी वो फिल्में जो कि अब रिलीज होने वाली है। फिलहाल हमने नई फिल्मों की बात की है, तो क्यों ना हमारे श्रोताओं को भारत भाग्य विधाता इसी फिल्म का गीत सुनाते हैं। और इस गीत के उस पार हमारे श्रोताओं को लिए चलेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र, जहां से सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी सुबह 9:10।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी।
1: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। मंत्रालय ने बताया कि किसान 9140245981808

अपने नंबर को व्हाट्सएप पर तिलहन किसान मित्र के नाम से सेव कर सकते हैं और मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों के बारे में किसी भी भारतीय भाषा में जानकारी ले सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में आगामी 1 और 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहलों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए और रजत पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा जन कल्याण में संसाधनों की कमी दूर की जा सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का

0: ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए और रजत पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा जन कल्याण में संसाधनों की कमी दूर की जा सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में चल रहे विशेष यातायात अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल 9703 वाहनों के खिलाफ एक ही दिन में कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ बीएल मीणा ने बताया कि सबसे ज्यादा 3638 मामले वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने के दर्ज किए गए। इसके अलावा अवैध नंबर प्लेट, वाहनों पर अनधिकृत लेखन, मॉडिफिकेशन और अवैध हूटर बत्ती तथा प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। इधर राजस्थान पुलिस ने भी आम जन से जल्दी मुनाफे के लालच में बिना जांच पड़ताल के किसी अनजान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा निवेश नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। कई जिलों में आंधी चलने और बारिश होने के समाचार हैं। डीग, धौलपुर और भरतपुर में तेज अंधड़ के साथ हल्की बरसात हुई, इससे तापमान में गिरावट आई है। वहीं कोटपुतली बहरोड के कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। वहां तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: बहरोड क्षेत्र में देर शाम मौसम में बदलाव के कारण तेज हवा और तूफान के कारण दर्जनों पेड़, 80 से अधिक बिजली के पोल और 50 से अधिक ट्रांसफार्मर गिर जाने के कारण विद्युत वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई, जिसे सुधारने के लिए बड़ी संख्या में बिजली विभाग की टीमें देर रात तक विद्युत व्यवस्था बहाल करने में जुटी रही। बहरोड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं पारा भी लुढ़क कर नीचे आ गया। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपुतली, बहरोड।
0: दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अब भी गर्मी और उमस का असर बरकरार है। कल जैसलमेर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। इस मौसमी बदलाव से आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। प्रदेश की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का कल निधन हो गया। वे 98 वर्ष की थीं। गौरी देवी का जन्म बाड़मेर के कोरण गांव में लोक कलाकार परिवार में हुआ। करीब 8 दशक तक वे मांड गायन के क्षेत्र में सक्रिय रहीं। गौरी देवी ने देश भर में मांड गायन की प्रस्तुतियां देकर प्रदेश की लोक संस्कृति

0: को एक नई पहचान दिलाई। वे भैरवी युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके चर्चित गानों में बागा चालो केसरिया, सौ कोसों दूर बसे महारा साजन, आई आई सावणियरी तीज और केसरिया बालम पधारो शामिल है। उनके कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार प्रसारित होते थे। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। पाली के गवरी में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोगों की विभिन्न समस्याओं के मौके पर समाधान के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से किसान मित्र एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आंधी और बारिश का दौर, पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी से प्रभावित और प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन। मांड गायन से देश भर में राजस्थान की संस्कृति को पहचान दिलाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी उदयपुर और कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर के दूसरे भाग के साथ एक बार फिर मैं मीनाक्षी और मेरे साथ
2: मैं रश्मित। और मीनाक्षी, जैसा कि हम सभी सुन रहे हैं कि आज हम सभी ने राजस्थान की मरु कोकिला यानी गौरी देवी जी को खो दिया, तो आकाशवाणी उदयपुर की ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि हम उन्हें देते हैं। और अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं मीनाक्षी। तो आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या से सुनवा रहे हैं गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।
3: तो आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या। आप बाल अधिकार विशेषज्ञ हैं, पूर्व सदस्य हैं राजस्थान बाल आयोग राजस्थान सरकार के अंतर्गत। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
4: जी नमस्कार।
3: और डॉक्टर शैलेंद्र, अगर हम बात करें क्योंकि जिस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की हम बात कर रहे हैं, और अमूमन हम ये मानते हैं कि किसी दिवस को मनाने का एक उद्देश्य ये होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे महत्व निहित होते हैं, तो इस दिन को मनाने का महत्व कितना है और वर्तमान संदर्भ में इस दिवस को मनाने की प्रासंगिकता कितनी बढ़ गई है?
4: देखिए, सिर्फ राजस्थान और भारत ही नहीं, ये पूरा जिसे हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे है, तो इसको हमारे आईएलओ ने वर्ष 2002 से मनाना शुरू किया था। क्योंकि चाहे वो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रही हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर रही हो, चाहे कोई भी युद्ध रहे हो, हमेशा सबसे अधिक प्रभावित कोई होता है उससे, तो बच्चे प्रभावित होते हैं। और बच्चों में भी अलग अलग स्थितियां ये हुई कि स्थितियां जब नॉर्मलाइज भी होने लगी, लेकिन फिर भी बच्चे और महिलाएं एक ऐसा वर्ग सदैव रहा है कि जो कहीं शोषण और हिंसा का शिकार ज़्यादा रहा है। तो 2002 में जब इस पर चिंतन हो रहा होगा आईएलओ में, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसको भी रखा कि बाल श्रम से बच्चे आज भी पीड़ित हैं, विशेष रूप से उन देशों के जो देश विकसित देश की श्रेणी में नहीं है, विकासशील हैं, वहाँ ज़्यादा समस्याएं हैं। तो इन सारे सब देश को समझते हुए डेडिकेटेड 12 जून को हर साल इस तरीके से मनाया जाता है कि पूरे विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर इस बाल श्रम की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कैसे प्रयास करें, उसको समर्पित ये दिन रहता है।
3: डॉक्टर शैलेंद्र, अगर हम बात करें कि जो हमने भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये बात जानने की कोशिश की, और आपने भी बताया कि हम विकासशील देश की श्रेणी में और धीरे धीरे हम विकसित देश की श्रेणी में आने लगे हैं, गिने जाने लगे, लेकिन जब हम देखते हैं बाल श्रम के आधार को हम देखते हैं, तो बाल श्रम को भारत जैसे देशों में या जहाँ यूँ कहें कि जहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, वहाँ पर बाल श्रम को श्रम नहीं मानकर हेल्पिंग हैंड की तरह देखा जाता है। तो क्या अगर इस दिवस को हम मना रहे हैं, तो इससे क्या हम कह सकते हैं कि किन मूल अधिकारों का बच्चों का हनन हो रहा है या उनका शोषण हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
4: देखिए, मैं तो कहूँगा हम जितने भी 54 आर्टिकल्स UNCRC के हैं, उसको मुख्य रूप से 4 भागों में हम बांटते हैं। तो चाहे वो सर्वाइवल राइट जीने का अधिकार हो, विकास का अधिकार डेवलपमेंट राइट हो, चाहे उसकी सुरक्षा का अधिकार प्रोटेक्शन राइट हो, और लास्ट आता है पार्टिसिपेशन राइट मतलब सहभागिता का अधिकार। ये चारों ही मुख्य अधिकारों का हनन होता है जब कोई बच्चा बाल श्रम की दलदल में अपने बचपन की आहुति देता है। आपने दो बातें बोली हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिस पर कॉमन लेमैन के अब ये मानना रहता है कि साहब ये काम ही तो कर रहा है, ये तो एक हेल्पिंग हैंड है। तो बिल्कुल, अगर आप कानून की भाषा को भी आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, पहली बात तो 14 साल से कम का यदि कोई बच्चा है और वो किसी भी तरह का काम करता है, वो बिल्कुल वर्जित है। लेकिन यदि उसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम की श्रेणी में यदि वो है, और यदि वो ऐसा कोई काम करता है जो हैजार्डस वर्क नहीं है, जोखिम भरा काम नहीं, उसकी जान जोखिम में नहीं है, और सेकंड वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है कि ठीक है उसका एजुकेशन कंटिन्यू चलता है, अभी गर्मी की छुट्टियां हैं और कुछ समय माता पिता का हाथ बटा रहा है, पारिवारिक

0: उद्यम में सहयोग कर रहा है, किसी और के वहां जाके काम नहीं कर रहा, इस तरह के कामों को उसमें पूरा एक थर्ड ए हमारा अनुलग एनिक्सर है उसमें सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं। यदि उस श्रेणी में वो बच्चा आता है तो उसको हम हेल्पिंग हैंड मानेंगे कि ठीक है अपना बच्चा पढ़ाई भी करता है, पढ़ाई के साथ साथ जैसे हम लोग कहते हैं हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, आज आप देखिए हम उसको प्रमोट भी करते हैं इस जगह पर, लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट के नाम पर यदि उसकी पढ़ाई बिल्कुल रुक जाए, उस बच्चे को पढ़ाई उसका राइट टू एजुकेशन भी उसका एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो उसको मिलना चाहिए, तो यदि इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बच्चा कोई काम में सहयोग करता है तो वो हेल्पिंग हैंड है, नहीं तो हर वो बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में माना जाता है।
1: डॉक्टर पंड्या, अगर हम भारत देश के संदर्भ में देखें तो बाल श्रम का मुख्य कारण यहाँ पर आप क्या देख पाते हैं, और अगर बात करें जब हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं या विगत आप इतने वर्षों से बाल श्रम के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है और काफ़ी इस क्षेत्र में कार्य किया, तो क्या चुनौतियाँ आप मुख्य रूप से देख रहे हैं?
0: देखिए चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि बातचीत करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये गरीबी बड़ा मुद्दा नहीं है, जॉब मिलना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, या उसकी कोई वल्नरेबल सिचुएशन है वो बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है ये जो ट्रैफिकर्स और जो इस तरह के लोग हैं इन बच्चों को टारगेट करते हैं, मिसगाइड करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को अवगत कराना चाहूँगा कि आप कभी इस भुलावे में ना रहें कि एक जो बच्चा चाइल्ड लेबर पे है काम करता है वो बहुत ज़बरदस्त कोई इनकम करके अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा होगा। कुछ समय पहले एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में यदि मैं 100 का सैंपल आपको बताऊं तो 100 बच्चों को यदि चाइल्ड लेबर को आइडेंटिफाई करके उनको पता लगाया गया कि वो कितने बच्चे ऐसे हैं 100 में से कि जो अपने घर पर कोई अच्छा आर्थिक सहयोग करते हैं, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे 64% बच्चे उसमें ऐसे निकले जो घर पर एक भी रुपये का आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं। मतलब ये अहमदाबाद, सूरत, पूना या जहाँ पर भी बच्चा है वो बच्चा रहता है, काम करता है, छोटा बड़ा कोई चाइनीज़ मोबाइल ले आएगा या कोई गुटखा या कुछ ऐसा खाने की आदत लग जाएगी, उसके स्वयं पर वो छोटा बड़ा खर्चा करेगा और मैक्सिमम वो लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं। रिमेनिंग जो बच्चे हैं उसमें भी दो तरह के बच्चे हैं, जो 14% या 12% का कोई डेटा था वो बच्चे वो हैं कि जो डेफिनेटली घर पर सपोर्ट करते हैं लेकिन हर मासिक नहीं करते हैं, वो 6 महीने में 7 महीने में एक बार जब वार त्यौहार आते हैं चाहे होली दिवाली ईद पर अपने घर आते हैं तो एकमुश्त पैसा देते हैं, लेकिन एकमुश्त पैसा भी वो कितना देते हैं 7 से 8 हज़ार रुपये अधिकतम एवरेज। अब जो रिमेनिंग बच्चे बचते हैं हाँ वो नियमित हर महीने घर पे पैसा देते हैं जो 10-12% बच्चे बचे हैं, लेकिन वो भी नियमित कितना दे रहे हैं आपको यकीन नहीं होगा, एवरेज यदि निकला जाए उनका तो वो भी जो पैसा निकल कर आया वो 6 से 7 हज़ार रुपये 6,800 के लगभग का फिगर था। तो आप देखिए एक बच्चा जो 6,000 रुपये घर पर दे रहा है वो भी इन सब बच्चों के अंदर सिर्फ 10 या 12% बच्चे ही हैं, बाकी तो घर पर सहयोग ही नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी एक वैसी बात है कि गरीबी के कारण या किसी मजबूरी के कारण वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पीयर प्रेशर काम करता है, इनको मिसगाइड किया जाता है, ये सस्ती लेबर है, इनका कोई वर्किंग आवर नहीं होता, एक छोटे बच्चे को रात को 12 बजे भी ढाबे पर उठाया जाता है, मारा पीटा जाता है, एक छोटे से कमरे में रखा जाता है जहाँ आपके और मेरे जैसे शायद लोग होंगे तो विरोध करें कि सर मुझे मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, मेरा वर्किंग आवर क्या होगा, ये छोटे बच्चे उस बात का विरोध नहीं करते और उसी का लाभ उठाते हैं हमारे ट्रैफिकर्स। तो कहीं पर भी मैं श्रोताओं को अवगत कराना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इनको देखकर इस बुलावे में ना रहे कि ये कोई मजबूरी का शिकार है, हाँ वो मजबूरी का शिकार है तो कौन सी इन ट्रैफिकर्स के टारगेट किए जाने की।
1: डॉक्टर पंड्या, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए और जिन आंकड़ों पर हम बात भी कर रहे हैं, अगर उन आंकड़ों को देखें तो बाल श्रम से इन बच्चों के शारीरिक, मानसिक और जो शैक्षणिक अवस्था है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए बहुत प्रभाव पड़ता है। आज मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे गाँव में रह रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हमारी सरकार की, आज वो बच्चा जितना वहाँ से पैसा कमाता है उससे ज़्यादा ही पैसा वो अर्न करेगा, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ तो इतनी बढ़िया स्कीम चल रही हैं, चाहे हमारी पालनहार योजना हो चाहे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स, उसमें हर वल्नरेबल कैटेगरी के करीब 10 कैटेगरी के बच्चे कवरअप होते हैं, तो उस बच्चे को उतना आर्थिक लाभ मिल सकता है जितना शायद उसको काम करके भी ना मिले। तो पहली बात तो ये वो जो काम करने जा रहा है उससे उसकी एजुकेशन प्रभावित हुई, अब वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, जीवन भर बच्चे को इसी लेबर वर्क में रहना है। तो सबसे पहला प्रभाव तो मानता हूँ कि जो बच्चा आज लेबर है वो जीवन भर अब लेबर ही रहेगा, अब संभावना नहीं कुछ वो और कर पाए। दूसरा, जो उनको खान पान मिलना चाहिए, जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो उस जगह नहीं मिल पाते, बचा कुचा खाना यदि होटल में काम कर रहे तो लास्ट की बचा हुआ कुछ होगा वो उनको मिलेगा, तो जो उनको न्यूट्रिशंस मिनरल्स या विटामिन्स मिलने चाहिए वो बॉडी में प्रॉपर नहीं जा पाते। ऐसे बच्चे आप बहुत जल्दी आप देखते भी होंगे किसी भी ढाबे पर जो बच्चा काम करता हो पतला दुबला से होगा, एक कॉमन नाम होगा उसका छोटू, वो छोटू हर एक दुकान पर आपको जब काम करता हूँ मिलेगा, वो कमज़ोर होगा, दुबला पतला होगा, उसने खाना कब खाया पूछोगे तो वो एक ही टाइम खाना खाता है रात को जब सब चीज़ें वाइंड अप होती हैं, या दिन में जब उनको आधे घंटे का बीच में रेस्टोरेंट पर या किसी फैक्ट्री में जॉब का ब्रेक होता है। तो इनका शारीरिक विकास भी रुकता है, मानसिक विकास भी रुकता है, किस तरीके से रुकता है, इनके साथ मार पिटाई भी होती है कॉमन, शायद वर्कर के साथ जितना मार पिटाई या अन्य काम नहीं करवाए जाते उतने हमारे चाइल्ड लेबर से करवाए जाते हैं। वो बच्चा उस मालिक के कई बार पैर भी दबाता है, घर के कामों में भी सपोर्ट करता है, जो बड़े लेबरर्स वहाँ पर काम करते हैं कई बार वो भी शोषण करते हैं कि छोटा बच्चा ही हमारा भी सहयोग करेगा, तो ये मार का भी सामना

0: करता है, गालियों का भी सामना करता है, शारीरिक और मानसिक तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ में आर्थिक और भविष्य की दृष्टि से भी इसके भविष्य का शोषण उसी उम्र में हो जाता है, ताकि बच्चा जीवन भर इसी दलदल में झगड़ा रहेगा।
1: डॉक्टर पंडे, अगर हम बाल श्रम की बात करें तो बाल श्रम और स्कूल छोड़ने की जो समस्या है, इनके बीच के आप अंतर संबंध को भी समझाएं, क्योंकि सरकारों द्वारा मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, साथ ही साथ मिड डे मील के तहत उन्हें भोजन भी दिया जा रहा है, उसके बावजूद ये बाल श्रम पनप रहा है, या यूं कहें इनके आंकड़ों में वृद्धि जो हुई थी हालांकि अब कंट्रोल में आने की स्थिति में, इस पर क्या विचार है आपके?
0: देखिए, अगर हम CLPRA हमारा जो एक्ट है बाल श्रम के ऊपर, जो हमारा कानून बना हुआ है, उस कानून की परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है वो चाइल्ड लेबर है, मतलब आउट ऑफ स्कूल बच्चा चाइल्ड लेबर की कैटेगरी माना जाएगा एज पर दिस एक्ट। दूसरी बात ये कि ये बच्चे स्कूल में इतनी सुविधा मिलती है, जैसा आपने कहा कि जब मिड डे मील भी मिलता है, सब कुछ बढ़िया, बच्चे छोड़ क्यों रहे हैं स्कूल? तो मैंने आपको बताया पहले भी, उसी बात को मैं दोहराऊंगा कि ये सारे वो बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर, जैसे रिसेंट आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पहले तो हमने कई सारे रेड एंड रेस्क्यूज किए थे, अभी रिसेंट महीना भर भी नहीं हुआ है, अभी हम लोग सूरत से 90 प्लस बच्चों को मुक्त करवा के लेकर आए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 70 बच्चे अपने उदयपुर के ही थे, बाकी बच्चे आसपास से, 70 बच्चे उदयपुर के थे। उन सारे बच्चों को जब पूछा गया कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही स्कूल में पढ़ने की, लिखने की, खाने की, पीने की, क्यों गए आप लोग सूरत, तो उन सब के जो कॉमन जवाब थे वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये, जैसे वो अपने मैक्सिमम अपने जो ओगड़ा वाला क्षेत्र था, ओगड़ा थाना क्षेत्र के अधिकतम बच्चे थे 70 में से भी, तो वहाँ पर एक से दो ट्रैफिकर इन्वॉल्व है, मैंने SP मैडम से भी निवेदन किया है कि उसका भी हम लोग पता लगवा रहे हैं कि इस तरह कैसे कौन से लोग, ये लोग क्या करते हैं कि ये मैपिंग करते हैं ट्रैफिकर्स कि यार ये बच्चे के माता पिता नहीं है, ये ऑर्फन है, काका भाव के पास रहता है, काका भाव को मोटिवेट करेंगे साहब पढ़ के क्या करना है, बच्चे को भेज दो अभी से काम करेगा साहब, तो ऐसे ऐसे बच्चों को ये लोग ट्रैक करते हैं और इनकी फैमिलीज को ये अलग अलग प्रलोभन देके इन बच्चों को या तो खरीद कर या कोई एक प्रलोभन देकर कि भाई एक मुश्त एक पैसा दे दिया या हर महीने साहब आपको इतने पैसे मिल जाएंगे और बच्चा अच्छा काम कर रहा, बहुत बढ़िया काम है, खाने पीने की सब सुविधा है, ये ऐसे बच्चों को वहाँ पर मिसगाइड करके लेके जाते हैं। अगर इन बच्चों को वहाँ पर जब चले जाते हैं, पहले उनको भी मोटिवेशन होता है, हम एक नई सिटी में जा रहे हैं, गाँव से निकल कर बड़ी मेट्रो सिटीज का एक क्रेज़ होता है, पहले भी एक दो बच्चे गए हो तो उनको भी लोग देखते हैं, क्योंकि जब बच्चा गाँव में आता है तब उसका पहनावा अलग होता है, उसके हाथ में चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ वो किस तरीके से रह रहा है वो कभी भी कोई बच्चा आके नहीं कहता, वो बेस्ट पार्टी बताता है, नहीं तो सब उस पर हंसेंगे ये समझ के। तो पीयर प्रेशर ग्रुप भी काम करता है, जब बच्चे वहाँ जाते तब उनको मालूम पड़ता है कि भाई हम लोग कैसे रह रहे हैं, मैंने देखा था वहाँ बच्चों मुक्त कराते हुए, कुछ फोटोज पत्रिकाओं में वगैरह में छपे भी थे, आप देखेंगे उनमें खूब सारे बच्चे बिल्कुल सिंपल, एक उन्होंने पहन रखा उनका इनर वियर है, ना कपड़े ना कुछ, इतनी गर्मी होती है और सूरत में वो एक छोटे से फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे टेक्सटाइल में, साड़ी को लपेटने का, उस पर लोगो लगाने का, उसकी पैकेजिंग का, और ये अगर वो काम कोई अपना आदिवासी बच्चा देख ले तो कभी भूल के भी वो सूरत ना जाए किसी काम करने, तो ये जो पीयर प्रेशर ग्रुप है ये काम करता है। तीसरा ये है कि कई बार बच्चों को एकदम छोटा सा इंस्टेंट लाभ ज़्यादा दिखता है, हम लोग भी जब छोटे थे आपने भी देखा होगा पढ़ाई के लिए हमें बार बार समझाना पड़ता था शायद घर वालों को, लेकिन शायद बाहर खेलने के लिए मोटिवेट ना करना पड़ता हो, तो कई बार आपको कहाँ आपका रुझान है, तो कई बार लोगों को पढ़ाई में ऐसा लगता है दिलचस्पी कम है, क्या करना है पढ़ के, और हाँ वो जा रहा मैं भी चला जाऊँ, तो इस वजह से भी बच्चे थोड़े से डाइवर्ट होते हैं।
1: अगर बाल श्रम की हम बात करें और सरकारी प्रयासों की तरफ हम चलें, तो बाल श्रम को रोकने के लिए किन किन कानून या प्रावधानों का मतलब उल्लेख हम कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और किस तरह से उनको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है?
0: देखो, अगर चाइल्ड लेबर की बातचीत करी जाए तो चाइल्ड लेबर में मैं अक्सर अभी पुलिस विभाग को जब ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं उसमें कहता भी हूँ, मॉडल FIR के मैं अक्सर पक्ष लेता हूँ। मॉडल FIR का मतलब ये कि हमने जब शुरुआती तौर पर जब बाल श्रम रेस्क्यू करके FIR दर्ज कराना शुरू किया था, तो मैंने एक बार करीब 12 सेक्शन लगवाए थे सिंपल एक चाइल्ड लेबर के मामले में, बच्चा आदिवासी का SC ST एक्ट भी लगा, किशोर न्याय अधिनियम का सेक्शन 75-79 भी लगा, CLPRA भी लगा, हमारा BNS तब IPC चलती थी उसकी हमने इंडियन पेनल कोड उसकी भी धारा लगवाई, जो BSN भारतीय न्याय संहिता हो गया उसकी भी धाराएं लगी, हमने उस बच्चे के साथ में उसको मार पीटे के साथ में रात को जो उसका जो मालिक था उसको मारता पीटता था, हमने क्रूरल्टी के सेक्शन और लगाए। तो चाइल्ड लेबर के मामलों में बहुत सारे शोषण बच्चे के होते हैं, लेकिन यदि मुख्य रूप से बाल श्रम पर यदि आप फोकस करें तो दो कानून है हमारे पास, किशोर न्याय अधिनियम 2015 तो है ही है, उसके सेक्शन 75 साफ साफ ये कहता है कि क्रूअल्टी अगेंस्ट चिल्ड्रन के बच्चे के साथ किसी भी तरह की हिंसा होती है तो सामने वाले जो व्यक्ति है उसको सजा का प्रावधान है, उसको सजा मिलनी चाहिए, जुर्माना भी है और जेल भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है वो भी डेफिनेटली है ही है, वो भी साफ साफ कहता है, किशोर न्याय अधिनियम तो पूर्ण रूप से 18 साल से पहले के बच्चों की बात कर रहा है, उसमें कोई बाइफर्केशन भी नहीं किया है कि किशोर बालक बालिका अलग है और ये है, लेकिन जो हमारा CLPRA उसमें फिर भी लिखा है कि 14 साल तक तो बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकते हैं, और 14 से 18 में उसने सामान्य कामों को अलाउ किया है लेकिन हैजार्डस वर्क को अलाउ नहीं किया है।
1: अगर हम

0: क्योंकि बाल श्रम के कानूनों की बात कर रहे हैं, बाल श्रम का हम इतना रोकने के लिए हम इतना प्रचार प्रसार भी सरकार द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन आम तौर पे अगर कोई व्यक्ति किसी को बाल श्रमिक के रूप में दिख जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए और किस तरह से अगर वो उसको बाल श्रम से मुक्त करवाना चाहता है तो उसे क्या स्टेप उठाने चाहिए?
1: सबसे पहला काम तो उस व्यक्ति को ये करना चाहिए कि आपको ये समझ लेना है कि इस बचपन को बचा के आप उसके परिवार का भला ही कर रहे हैं। एक जो बहुत बड़ा मिथ हमारा ये होता है, अरे यार बढ़िया इसके इसके इससे शायद इसके विधवा माता का सहारा होगा, ये घर का कुछ पैसा दे रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चा जो आज काम कर रहा है ये जीवन भर काम करता रहेगा यदि आपने इसको नहीं छुड़वाया तो आप बिल्कुल राइट डिसीजन ले रहे हैं। आपको ये दूरदर्शिता रखते हुए उस बच्चे का जीवन बचाना है। अब दूसरी बात, ये बचाएंगे कैसे? तो भाई सबसे पहला हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं कैसे इस बच्चे को लूँगा, मैं क्यों पुलिस के पास जाऊँ, इतना मेरे पास समय नहीं है। तो हमने एक डेडिकेटेड चाइल्ड हेल्पलाइन बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सुविधा के लिए है, बच्चों के संरक्षण के लिए है। सिर्फ चाइल्ड लेबर ही नहीं, आपको कोई बच्चा किसी मुसीबत में दिखता है तो आप टोल फ्री भारत सरकार का नंबर है 1098-1098 इसको डायल कर सकते हैं। हमारी जो चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है वो मौके पर पहुंचेगी और बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू करेगी, बच्चे के लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा वो उसके लिए करेगी। दूसरा, अगर वो बच्चा बिल्कुल ऑर्फन है, उसका कोई संभालने वाला कोई लीगल गार्जियन नहीं है, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप उस बच्चे को ले जाकर आपको पालना या आपको घर पर रखना, नहीं। हमारे पास किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत हर एक जिला मुख्यालय पर ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल्स हैं जिसको कानून भाषा में हम होम्स कहते हैं, चिल्ड्रन होम और शेल्टर होम। तो अगर बच्चा कोई ऐसा भी है जिसका कोई संरक्षण वाला नहीं है, जो आपको देख के लगता होगा अरे बच्चा साहब काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, तो बिल्कुल हमारे अच्छे हॉस्टल्स हैं, होम्स हैं, जैसे बच्चे का रहना खाना पीना दूध पढ़ाई सब कुछ फ्री है, चाहे बच्चा किसी भी जाति धर्म का हो। ऐसा नहीं सिर्फ SC ST के लिए, जनरल का बच्चा है, OBC का बच्चा है, किसी का भी बच्चा हो, 18 साल से कम का यदि कोई बच्चा आपको मिलता है तो आप उसके संरक्षण के लिए सिंपल एक नंबर डायल करके भी उसका जीवन सुरक्षित कर सकते हैं।
0: डॉक्टर पंडे, अगर बाल श्रम से अगर हम किसी बच्चों को मुक्त करवा रहे हैं, या फिर आपने जैसा कि बताया आपने गत दिनों में सूरत माह से लगभग 70-80 बच्चे जो राजस्थान के ओगड़ा जाड़ोल क्षेत्र के हैं इनको आपने छुड़ाया, तो क्या बाल श्रम से मुक्ति के बाद क्या उनके पुनर्वास के लिए या फिर उनके शिक्षा के लिए क्या कोई व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती है? क्या ऐसी कोई संस्थाएं या फिर कोई इस तरह से सरकारी विभाग हैं जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं?
1: राजस्थान के बच्चे और राजस्थान की जनता तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि राजस्थान में तो डेडिकेटेड एक अलग से डिपार्टमेंट है, कमेटीज़, और वो तो हर एक स्टेट में है, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी बात ये सारे स्टेट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है WCD, महिला एवं बाल विकास विभाग। लेकिन राजस्थान में डेडिकेटेड बच्चों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट और है, WCD तो है ही, महिला एवं बाल विकास विभाग। हमारे यहाँ एक और विभाग बनता है, निदेशालय बाल अधिकारिता, डायरेक्टर चाइल्ड राइट के नाम से हमारा एक पूरा डेपरेट डिपार्टमेंट है, निदेशालय है जयपुर में, और हर एक जिला मुख्यालय पर सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बैठते हैं, उदयपुर में भी बैठते हैं, इनका ऑफिस यहीं आपके चित्रकूट नगर में है। तो वो डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट है, अधिकारी है, एक पूरी पूरी सेल है जो पूरी सेल बच्चों के अधिकारों के लिए ही काम करती है। नंबर टू, एक कमेटी और बनती है जिसको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा होता है। बाल आयोग में जब हम लोग थे हमारे माध्यम से इनके इंटरव्यूज होते हैं, आज भी वो कमेटी हर एक जिले पर है जिसमें 5 सदस्य होते हैं जिसको कहते हैं CWC, पूरा नाम है बाल कल्याण समिति चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का भी काम है कि बच्चे रेस्क्यू करने के बाद कैसे जाएंगे, वो कहाँ जा रहे हैं, उन बच्चों का फॉलोअप लेना, बच्चों का स्कूल में एडमिशन हुआ या नहीं हुआ उसको ट्रैक करना, बच्चों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना, और यदि कोई बच्चा बिल्कुल ऑर्फन है तो मैं जिस होम्स की बात कर रहा था उस होम में रखने का आदेश भी CWC ही जारी करती है। तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि बात की जाए तो CWC है, ये DCR डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट है, और तीसरा है DCPU जिसके कलेक्टर साहब अध्यक्ष होते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है जो हर 3 महीने में एक बार मीटिंग करती है और इन सब चीज़ों की निगरानी को सुनिश्चित करती है।
0: जाते जाते कार्यक्रम में आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: साथियों, मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक तो नहीं लेकिन मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि आप चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, हर एक धर्म में इन बच्चों को भगवान का दर्जा दिया है, ईश्वर का दर्जा दिया है। अगर वास्तव में ये ईश्वर हैं तो इतना फर्क क्यों? क्यों आज भी इन छोटे बच्चों को आपके पी हुई झूठी चाय का कप उठाना पड़ता है? क्यों आज भी इन छोटे बच्चे इस ईश्वर स्वरूप को आपकी गाड़ियों के कांच साफ करने पड़ते हैं? क्यों आज भी इस ईश्वर को रस्तों पर कचरा बीनना पड़ता है, रात को होटल ढाबों पर काम करना पड़ता है? इस भारत राष्ट्र की आधी आबादी इन बच्चों की है, 43% पॉपुलेशन हमारे 18 साल से कम बच्चों की है। यदि ये बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, अगर ये बच्चे आज भी होटल ढाबों पर छोटू के नाम से बुलाए जा रहे हैं,

0: काम कर रहे हैं तो हमारा राष्ट्र कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा। तो साथियों, मैं आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग तो प्रयासरत हैं ही समाज से इस कलंक को मिटाने के लिए। आपको भी यदि अपने आसपास कोई बच्चा दिखे तो आप ज़्यादा कुछ ना करें, एक 1098 पर कॉल भी कर देंगे तो भी एक सच्चे भारत के नागरिक होने का कर्तव्य अदा करेंगे। मेरा बस इतना ही आपसे निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: आप थे डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, और आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत। और इसी के साथ नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम बस यहीं तक। अब दीजिएगा इजाजत रश्मि और मीनाक्षी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया

0: जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं, क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा था।
5: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कहीं प्यार ना हो जाए, इस फिल्म का गीत। संगीत था हिमेश रेशमिया का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। कभी कभी बिना तलाश के कोई अपना मिल जाता है और जिसे देखकर दिल को सुकून सा आ जाता है, और दिल कहता है कहो ना प्यार है।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन।
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
8: RBI कहता है
9: तरो से ही शुरुआत।

सोनू निगम और चित्रा की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे तेरा जादू चल गया इस फिल्म से। स्माइल दरबार का संगीत, गीत के बोल लिखे थे समीर ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला गीत एक बार फिर से लिखा है समीर ने, संगीत है जतिन ललित का, आवाज़ें अनुराधा पौड़वाल और बाबुल सुप्रियो की। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम के। पढ़ लो मेरी आँखों से ढाई अक्षर प्रेम के, लफ्ज़ों की ज़रूरत कहाँ होती है, जो बात दिल में छुपी हो वो आँखें कह देती हैं खामोशी से।

ढाई अक्षर प्रेम की, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत आप सभी को सुनवा रहे हैं राजेश रोशन के संगीत से सजा। फिल्म का नाम है क्या कहना। आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की हैं।

प्यार में छेड़ते हो मुझे ये अंदाज भी प्यारा लगता है, तुम्हारी हर शरारत में भी अपनापन सारा लगता है। नोकझोंक से भरा ये गीत था क्या कहना फिल्म से। आइए अगला गीत भी इसी नोकझोंक के साथ है, फिल्म का नाम है हद कर दी आपने, संगीत आनंद राज आनंद का, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, इस बार आवाज़ें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की।

दुल्हन हम ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत में अगला गीत आप सभी को सुनवा रहे हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है समीर ने, फिल्म का नाम है दीवाने। दीवाने प्यार के कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हर ख्वाब में बस उसी के हो जाते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे इस दिल को, लेकिन मोहब्बत में हम तो बस उसी के हो जाते हैं।

प्यार मोहब्बत इश्क की बातें करते कुछ गीत आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। और अब ये अगला गीत आप सभी के लिए वास्तव फिल्म से है। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की हैं।

वाकई में प्यार मोहब्बत में किसी सच्चे साथी का होना कितना ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत की राह हमेशा आसान नहीं होती उदयपुर, कभी होठों पर मुस्कुराहट होती है तो कभी आंखों में नमी भी, लेकिन सच्चा साथी वही है जो हर हाल में साथ निभाए, खुशियों में मुस्कुराए और मुश्किल में हौसला बढ़ाए। चलिए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अब आखिरी गीत आप सभी को सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा। इस गीत के साथ ही रश्मीत को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर सुबह के 11 बजने को हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत से सजा कार्यक्रम गोखड़ा।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा गुड्डू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गर्मी और तावड़ा रीवा तो आप ही कर रहे हैं, पर सब बड़ी बात जो है वह अपने यह ध्यान रखनी है कि शरीर में पानी की कमी नहीं वेनी वेवा देनी चाहे, और आप ही घरों निकला तो कहीं ना कहीं खाइन निकलना है। एक दूसरी बात और ध्यान रखनी है कि कहीं भी गर्म ठंडो पीता समय ध्यान रखना है कि पानी यदि एकदम बाढ़ निकलन आवा तो गर्मी आवा या बाढ़ने बालकनी में भी गया हाँ, छत पे भी गया, तावड़ा वाली जगह गया हाँ या गर्म जगह गया हाँ, तो एकदम वो ठंडू ठंडू कहीं नहीं पीणो है। इच्छा तो बहुत वे और एकदम वो सिर पे पानी नहीं डालना है। वाता तो आप ही करता रहेंगा, पर लारे लारे हूँ तरंगा राजस्थानी लोक संगीत रा प्यारा प्यारा सा गीत हुणा आगलो गीत।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम हो गुखड़ा, और गुखड़ा में आप ही बात कर रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी नहीं है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और अपने राजस्थान में तो गर्मी पड़े भी बहुत ज़्यादा है। तो सब बड़ी बात जो है, आप ही बात कर रहे हैं पानी पिवारी, खावा पिवारी। खावा पीवा में भी ठंडी तासीर रहा भोजन आप ही करा, तो थोड़ी सी पेट में शरीर में ठंडक बनी की रहे। जिस तरह सत्तूरु पानी आप ही पीते रहा, और ठंडी ठंडी जिस तरह आमरो रस निकालना पी लेवा, निम्बूरी शिकंजी आप ही दिन में दो चार बार पीवा, तो केरी री छाछ बनाई रखा, तो टाबरा ने जदि भी ठंड गर्मी लागे जटू बनाई वाणाने पकड़ेगा। तो दही री भी मोली मोली छाछ लस्सी ऐसी चीज़ां वे जो शरीर में ठंडक पहुँचावे है। और दही रो सेवन जरूर करा, प्याज जरूर खावा ताकि लो नहीं लगे। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। और हुन तो ले रहे हैं लारे लारे प्यारा सा राजस्थानी लोकगीत।

मुखड़ा कार्यक्रम आप ही हो रहे हैं, आप हो अपनी लाडली संगीता भाई सारे लारे, और कार्यक्रम में आपने होनाई रहा हाँ राजस्थानी लोक संगीत रा प्यारा प्यारा सा लोकगीत। व्याह शादी रो सीजन तो अबार नहीं है, तो वार टेंशन तो नहीं है क्योंकि अधिक मास चल रही है और वास व्रत चल रहा होगा, तो वास व्रत में भी करवा में यो ध्यान रखनो है कि एसिडिटी नहीं बहनी छावे, कहीं ना कहीं थोड़ो सो लिक्विड आप पीता रहो और अपने शरीर ने डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहे। जितने पसीनो ज़्यादा आवे वड़ा ने पानी कम ओ कम 2-3 लीटर पूरा दिन भर में पीनो ही है 3 लीटर पानी तो, और हर बात रो ध्यान रखांगा। यदि आप ही हौरांगा, यदि आपनो परिवार हौरेगा, परिवार रो आप ही ध्यान रख पाऊँगा और वड़ा ने खुश रख पाऊँगा। तो माँ भी आपने खुश रखवारी पूरी पूरी कोशिश करा सा, और अणी क्रम में आपने हुनावा आगलो राजस्थानी गीत, और यो गीत आप हुनता रीजो, और लारे लारे संगीता बाई साने दो गोखड़ा कार्यक्रमों इजाजत, पाछा फेर मिलांगा, राम राम सा।

मीडियम वेव 266.66 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत से सजा कार्यक्रम गोखड़ा। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त संगीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुगम संगीत आज के व्यस्ततम जीवन में मानसिक शांति प्रदान करता है। यह प्रेम, भक्ति, देशभक्ति, प्रकृति और जीवन के विभिन्न भावों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता समय के साथ लगातार बढ़ रही है। ऐसा मधुर संगीत है कि बहुत ही सरलता से अपनी बात कह जाता है और हर आयु वर्ग को और हर व्यक्ति के दिल को आसानी से छू जाता है, क्योंकि सुनने में बहुत ही सरल होता है। इसकी तालों और रागों में कोई कठिनाइयां नहीं होती। रागों की खुशबू

भावों का गीत है, सुगम संगीत मन की सच्ची प्रीत है। हर दिल को अपने सुरों से जोड़ दे, यही इसकी मधुरता और इसकी असली जीत है। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं अनुराधा पौडवाल की इस प्यारी सी गजल से।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन।
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
8: RBI कहता है
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप जुड़े हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। रागों की खुशबू भावों का गीत है, सुगम संगीत मन की सच्ची प्रीत है। हर दिल को जो अपने सुरों से जोड़ दे, वही इसकी मधुरता और इसकी असली जीत है। इतना मधुर सा संगीत, और सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेश के बाद फिर से स्वागत है आपका सुगम संगीत के कार्यक्रम में, और आइए अब आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम की आखिरी गज़ल। सुगम संगीत इतना मधुर होता है कि हम उसमें खो से जाते हैं, और सबसे बड़ी बात सुरों की मिठास, शब्दों का श्रृंगार। सुगम संगीत दिलों का है सच्चा प्यार, जो छू ले मन को बिना किसी शोर के, वही तो है संगीत का सबसे सुंदर उपहार। तो सखियों, इसी के साथ दीजिए संगीता को इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर मिलने के वादे के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। सुनते हैं ये गज़ल।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बज चुके हैं। अभी आपने सुना सुगम संगीत का कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत में आपका स्वागत। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त संगीता का प्यार भरा नमस्कार। फिल्म संगीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे आपके साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, खूबसूरत से नगमे सुनते रहिए। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम शुरू करते हैं। मोहब्बत भी जिंदगी की एक खूबसूरत सी किताब है। कुछ पन्ने खुशियों के, कुछ दर्द का हिसाब। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही रिश्ता होता है अपने महबूब से आपका, क्योंकि कहते हैं कि मोहब्बत ऐसी ही चीज़ है कि जब ये हंसाती है तो दिल बहुत खुशनुमा हो जाता है, वातावरण, मन, प्यार, सब कुछ बहुत खुशनुमा हो जाता है। लेकिन जब रुलाती है तो चारों तरफ उदासी छा जाती है। तो बने रहिए आपके दोस्त के साथ और सुनते रहिए खूबसूरत सी नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।
1: ये जो चिलमन है

फिल्म संगीत हम अब तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अभिमान से है। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं और एसडी बर्मन का संगीत है।

जिंदगी की राह में प्यार का सहारा मिल जाए, सफर कितना भी कठिन हो किनारा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे साथ किसी साथी का हाथ हो और हाथों में हम उसका हाथ लिए चलते हैं, किसी का साथ हो, किसी का प्यार हो, तो कोई भी डगर हो, कोई भी सफ़र हो, मुश्किल नहीं लगता। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अनुरोध से है, किशोर कुमार की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है न्यूज़ ऑन AIR ऐप। ऐप पर जाएं और उस पर हमारी फ्रीक्वेंसी मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी कि 1125 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी उदयपुर को सेलेक्ट करें और कहीं भी कभी भी हमारे कार्यक्रमों का लुत्फ़ उठाएं। आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म तर्ज से अभी ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म फकीरा से लता जी की आवाज़ में।

प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त रुक सा जाता है, जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी की भीड़ में एक तू ही तो अपना लागे रे, बाकी सब मिले तो मिले मगर दिल को न भा सके। श्रोताओं, फिल्म संगीत हम अब तक पहुंचा रहे हैं और सुनवा रहे हैं कुछ सुमधुर से गीत। कार्यक्रम के इस सेगमेंट में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ 80s और 90s की फिल्मों के हिट सॉन्ग्स। तो सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में द्रास फिल्म से ये गीत।

फिल्म संगीत हम अब तक पहुंचा रहे हैं और सुनवा रहे हैं आपको खूबसूरत से नगमे। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म धड़कन से है, उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग कर

0: ने की भी यही उम्र है।
1: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना,
1: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म गब्बर इज बिग से, और आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और पलक मच्छाल ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म गब्बर इज बैक से ये गीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा माय नेम इज खान से। इसी के साथ आपकी दोस्त संगीता को दीजिए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

मेरे वेब 266.66 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर 1 बजने को है, आइए जुड़ते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास एजेंडा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और देश लगातार प्रगति कर रहा है।

0: श्री अठावले ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी बढ़ी है और मेक इन इंडिया अभियान ने तेज गति पकड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय भी समाज कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। जनगणना 2027 पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग की जानकारी मिलेगी, जिससे केंद्र सरकार को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में और मदद होगी।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। तब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिलेगी। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, एससी एसटी को, ओबीसी को फायदा मिला है, और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: केंद्र सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेचें। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश एक अस्थायी उपाय है, जिससे इस संकट के समय में जमाखोरी को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से विशेष प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। 12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के विषय पर आधारित इन प्रदर्शनियों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया जा रहा है। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जिला सूचना केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बाड़मेर में ये प्रदर्शनी भगवान महावीर टाउन हॉल में और 12 के जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में लगाई गई है। आमजन के अवलोकन के लिए ये प्रदर्शनी 14 जून तक खुली रहेगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के अनुसार राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप से भारतीय दल की वापसी के दौरान बीमार पड़ने के बाद राणा का हाल ही में चिकित्सा उपचार किया गया था। उन्हें नई दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें स्टंट डाला गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में सक्रिय एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके असर से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बरसात हुई, जिससे श्रीगंगानगर में सर्वाधिक 52 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अब भी जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 1:05 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं महिलाओं के लिए जानकारी और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम महिला जगत।

0: सारी उम्र आंखों में एक सपना याद रहा, सदियां बीत गई पर वो लम्हा याद रहा। जाने क्या बात थी दोस्ती में हमारी, सारी महफिल भूल गई पर सखियां याद रहीं। याद रही तभी तो मैं यहाँ चली आई। तो इसी के साथ आगाज करती हूँ मैं खुर्शीदा बानू, और मेरे साथ हैं
1: अर्चना आचार्य।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। अर्चना कैसी हो?
1: बिल्कुल खुर्शीदा, इतनी धूप में आना पड़ा मुझे मेरी सखियों से मिलने और बहुत सारी जानकारियां जो देनी है इन सखियों को।
0: हम धूप की भी परवाह नहीं करते हैं, बस जब बात सखियों की होती है तब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के और आपके पास दौड़े चले आते हैं, क्योंकि बातों में मज़ा बहुत आता है।
1: जी हाँ,
0: आता
1: और
0: है ना?
1: क्योंकि कहते हैं ना, हमारी सखियां भी हमारा इंतजार बड़ी बेसब्री से करती हैं कि आज हम क्या क्या शेयर करेंगे उनके साथ, अपनी जिंदगी के अनुभव और क्या क्या आगे होने वाला है और प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है।
0: बिल्कुल, उनके सस्पेंस को हम खत्म करते हैं और हमारी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आए हैं हम आपके लिए लेकर सखियों, एक अच्छा विषय है आज का, कि हमारी जो सरकार है, राजस्थान सरकार, उनके 2 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में हम आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता ही दें।
1: जी
0: क्यों
1: हाँ,
0: अजाना बताए ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के 2 वर्षों में संकल्प पत्र के 70% से अधिक वादों को पूरा करने का दावा किया है। और इन 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का सफल संचालन और यमुना जल समझौता और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार और पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई शामिल है ना अर्चना?
1: जी बिल्कुल। और उपलब्धियों की बात करें तो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे जल संसाधन और भार संचार सिंचाई और बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर और परियोजना को अगर केंद्र सरकार से मंजूरी और राष्ट्रीय परियोजना का हर्षोल्लास किया जा सकता है।
0: बिल्कुल। और यमुना जल समझौते की अगर हम बात करें तो ताजे वाला हेड से पानी लाने का ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ, ये बहुत अच्छी बात है ना।
1: जी
0: और जल
1: हाँ
0: जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना को तेजी से धरातल पर उतारा गया है अर्चना।
1: बिल्कुल, और ये तो बहुत सही किया, क्योंकि रोजगार और प्रशासनिक सुधार, जो भर्ती बार पेपर लीक आदि बहुत सारे हैं ऐसे ना खुर्शीदा,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: पेपर लीक की अगर हम बात करें तो पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन करके 200 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं और नकल माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं कि 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी गई और 1.5 लाख से ज़्यादा नई भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। और साथ साथ हम बात करें किसान कल्याण के बारे में, तो हम इससे अछूते नहीं रह सकते हैं, तो इसकी भी बात हमें करनी ही पड़ेगी कि
1: जी हाँ
0: कृषि ग्रहण ऋण योजना और सम्मान निधि के बारे में बात करें तो किसानों को हजारों करोड़ रुपए के कृषि ऋण और पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें राशि बढ़ाकर प्रतिवर्ष ₹90,000 तक की गई है, जिसका लाभ उन्हें मिला है। और बिजली व्यवस्था की बात अगर हम करें तो 22 जिलों में किसानों को दिन के समय कृषि बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सही बात है कि अगर खेत अगर वगैरह सब कुछ हो, साथ में बिजली और ये ऋण की व्यवस्था ना हो, तो सारी व्यवस्थाएं जो है फीकी पड़ जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है।
1: जी हाँ, क्योंकि किसानों का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि पानी और बिजली नहीं रही तो क्या खेत में बोएंगे और क्या तो उगाएंगे।
0: और क्या हमारे तक
1: जी
0: पहुंचेगा,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि किसानों से ही आज हम जीवित हैं। और महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की हम बात करें तो लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं की जन्म और शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी है, और लखपति दीदी अभियान जैसे कि करीब 19 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया गया है। और पेंशन वृद्धि की बात करें तो वृद्धजनों और ज़रूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है।
1: जी हाँ, और यहाँ तक कि स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर भी फोकस किया है, और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा दायरा बढ़ाया गया और अन्नपूर्णा रसोई में थाली का वजन 450 ग्राम से 600 ग्राम की कीमत ₹22 घटा करके ₹15 कर दी गई है।
0: ये तो रही हमारी अच्छी अच्छी जानकारी हमारी सखियों को। और अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ सखियाँ हमारा इंतज़ार हमेशा करती है, तो मैं लेकर चलती हूँ सखियों को वहीं पर जहाँ जाना चाहती है। कुछ

आज तो है तेरी बातों में जो बात यहाँ तक आ पहुँची। हम दिल से गए तुम दिल दिल तुम पर गया। हम दिल से गए दिल तुम पर गया और बात खुदा तक जा पहुँची।

0: अर्चना, हमने गीत सुने और संदेश भी सुना। मज़ा आया ना सुन के, अच्छा लगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत था और मज़ा तो डेफिनेटली आया
0: सभी
1: ही
0: में आता
1: है, सभी
0: है
1: में
0: ना,
1: आता
0: क्योंकि
1: है।
0: जहाँ मनोरंजन होता है वहाँ मज़ा ज़रूर आता है। क्योंकि कुछ भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो अर्चना, अगर हम दुखी होते हैं ना, तो अगर अच्छा सा गीत सुनते हैं ना, तो हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। और अब हम सखियों को और खुश कर दें, थोड़ा सा आगे प्रोग्राम में और लेकर चलते हैं, उनके सस्पेंस को ख़त्म करते हैं कि हम उनसे और क्या बात करने वाले हैं। तो बताओ मैं कुछ नया,
1: बिल्कुल,
0: हम बात करेंगे कि बाल अधिकार संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। ये विषय बहुत अच्छा है ना, इस पे बात करने में बड़ा मज़ा आएगा हमें। बाल अधिकार संरक्षण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत है। एक माँ, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासक के रूप में महिलाएं बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके शारीरिक मानसिक विकास और उन्हें शोषण से बचाने में सबसे आगे रहती है महिला, वाकई में।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिला का तो परम धर्म कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं, सब कुछ यही है, क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाना।
0: बिल्कुल, और जहाँ बात बच्चे की आती है वहाँ मम्मी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: नहीं करती है,
1: जी
0: वो
1: हाँ,
0: उसको डट के उसका मुकाबला करती है। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाकर देखें कि पारिवारिक परिवेश और पालन पोषण की हम बात करें, तो परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होती है, और माताएं बच्चों को सही गलत का पाठ पढ़ाने के साथ साथ उनके भावनात्मक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं।
1: जी हाँ, यहाँ तक कि जागरूकता का प्रसार, एक माँ अपने बच्चों को उनके अधिकारों और गुड टच बैड टच के बारे में बताती हैं, जिससे वह संभावित खतरों से सुरक्षित प्राप्त होते हैं, ताकि उन्हें ध्यान रहे कि कौन सा सही है और क्या गलत है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुर्शीदा, क्योंकि आजकल देखा है ना आपने, हर तरफ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, तो कुछ चीज़ें हम अपने बच्चों को खुद ही सिखा दें तो वो ज़्यादा बेहतर
0: घर
1: रहता
0: से
1: है।
0: ही शुरुआत करें तो बेहद अच्छा रहता है,
1: जी हाँ
0: ताकि आगे चल के उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। और क्योंकि बच्चा दूसरों से नहीं, हमारे से ज़्यादा सीखता है,
1: जी
0: तो शुरू से
1: हाँ
0: ही हम उन्हें छोटी छोटी बातें सिखाते रहें। और साथ ही साथ बात करें आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, तो ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने और टीकाकरण और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कानून और प्रशिक्षा कहते हैं ना, मतलब अधिकार जो होते हैं ना खुद के, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन तुम कहना चाहती हो।
1: जी हाँ
0: बाल संरक्षण आयोग अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम जैसे कानूनों के तहत महिला पुलिस अधिकारी बाल कल्याण समिति के सदस्य व न्याय और कानूनी सुरक्षा प्रदान हमें करती हैं।
1: जी हाँ और यहाँ तक कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी और आशाकर्ता, जैसे कि आपने बताया, शहरी स्तर पर यहाँ महिलाएं स्वास्थ्य, पोषण और टीकाकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं को बच्चों तक पहुँचाती हैं, और समुदाय का मार्गदर्शन वे माता पिताओं के बालिकाओं के अधिकारों को भी शिक्षित प्रदान करती हैं और जागरूक करती हैं।
0: और कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे कि बाल विवाह, बाल श्रम और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करने और बाल अधिकार संरक्षण का काम कर रही हैं, और शिक्षा की अलख भी जगा रही हैं। एक शिक्षित महिला परिवार और समाज को जागरूक करती है, जिसमें बेटियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने और बालिकाओं के समग्र विकास में मदद करती है। इस बात पर तो मैं भी जोर दूंगी कि बेटियों को शिक्षा जरूर देनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने दें, बेटे को ऊंची उड़ान भरने दें।
1: खुशीदा, इस बात पे मुझे दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं,
0: बिल्कुल,
1: बचपन की सुरक्षा और सम्मान, खिलौने और किताबें बच्चों का गहना नहीं है, उन्हें मजदूरी की भट्टी सहना, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए हम संकल्प, सुरक्षित हो बचपन, यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य हो।
0: और हमारे आसपास भी अर्चना ऐसे बच्चे होते हैं जो मैंने देखा है बहुत टैलेंटेड होते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभाव में पढ़ नहीं पाते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ
0: तो हमें भी ज़्यादा नहीं, अगर छोटी छोटी, जैसे गवर्नमेंट तो पहल कर ही रही है, लेकिन छोटी छोटी पहल अगर हम भी घर से शुरू करें और ऐसे बच्चों को ढूंढें और उनको वहाँ तक पहुँचाएं, तो उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी वो बहुत ही हमें आगे तक लेकर जाएंगी। तो हमें मतलब ये कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी ऐसा मौका मिले मदद करने का, तो ज़रूर उस बच्चे की मदद कीजिए, उसे आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। और ज़्यादा दूर नहीं जाए तो हमारे घर में मैट्स होती है, उनके बच्चे बहते, तो हम उनसे ही शुरू कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल खुर्शीदा, ये बहुत ही अच्छा विचार बताया आपने हमारे सखियों को, और मुझे लगता है सखियां भी हमारी बहुत स्मार्ट है और ये बातें जरूर ध्यान में रखेंगी।
0: बिल्कुल, वही भी इसको जरूर अप्लाई करेंगी। और अब चले वहीं जहां

जहाँ हमें जाना होता है। जब जब मैं देखूँ तुझको, देखूँ दिल को रूह को खबर लग जाए, तुझे ना किसी की नज़र लग जाए, और लगे अगर तुझे कुछ तो मेरी उम्र लग जाए।

0: अर्चना, कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा,
0: मजा आ गया
1: क्योंकि
0: ना?
1: हाँ मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई है फिर
0: बिल्कुल,
1: से।
0: जो पुराने गीतों की बात है ना अर्चना, बहुत अलग है। हम आज ये नहीं कहते

0: थे कि आज के गाने अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं लेकिन ओल्ड इज गोल्ड.
1: यस यस बिल्कुल डेफिनेटली। तो खुर्शीदा, हमारी सखियों को आप आगे और कहाँ ले जा रही हैं और क्या क्या बताने जा रही
0: बिल्कुल,
1: हैं?
0: हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप चढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा, एक साथ नहीं चढ़ेंगे. तो चलते हैं. आज क्या है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी बातें कर लें. विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है. और इसकी हम इतिहास और शुरुआत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य कम उम्र के बच्चों को श्रम बाजार में धकेलने से रोकना और उन्हें शोषण से बचाना है. बहुत ही अच्छा विषय है ये.
1: जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए और वैश्विक स्तर पर जाग के कहते हैं ना जागरूकता फैलाना और ठोस कदम उठाना, यहाँ तक कि कम से कम उम्र के बच्चों को श्रम बाजार में धकेलने से रोकना और उन्हें शोषण से बचाना है।
0: और बाल श्रम के कारण बताती हूँ मैं कि ये होता क्यों है. ये एक गंभीर समस्या है जो मुख्य रूप से कुछ कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कि गरीबी होती
1: जी
0: है.
1: बिल्कुल
0: बहुत राइट पॉइंट है ये. हम भले ही बात करें लेकिन राइट पॉइंट ये है कि गरीबी भी बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं.
1: जी
0: और साथ ही
1: हाँ
0: साथ अगर बात करें तो अशिक्षा और जागरूकता की भी कमी देखी जाती है, क्योंकि जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहीं पर ऐसे ही कार्यक्रम देखने को मिलते हैं. उचित शिक्षा का अभाव बच्चों के भविष्य को प्रभावित भी करता है. बेरोजगारी और सामाजिक असमानता देखने को मिलती है. और भारत में संवैधानिक प्रावधान को अगर हम देखें तो भारत में बाल श्रम को रोकने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानूनी प्रावधान भी हैं अर्चना,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: उनका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए. कि अनुच्छेद 24 जो है भारतीय संविधान का, ये अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने से रोकता है.
1: जी हाँ और अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाना, क्योंकि बाल श्रम निषेध एवं विनियत अनियमित ये अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, जिसके तहत खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति पूर्ण तरह
0: निषिद्ध है.
1: निषेध है.
0: बिल्कुल. और बाल श्रम किसी भी समाज के विकास में बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास और देश के भविष्य के लिए एक बड़ा कलंक हम इसे कह सकते हैं. और इस दिवस के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि बच्चों का सही स्थान फैक्ट्री नहीं बल्कि स्कूल है. तो मेरा तो हमारी उन सभी सखियों से यही अनुरोध है जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जी रही हैं, तो वो हमसे कहेंगी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं लेकिन स्कूल भेजने के लिए हमारी सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, तो बच्चों को प्लीज़ उनके तहत स्कूल में भर्ती कराएं और जब वो बड़े हो जाएं तो उन्हें अच्छी पोस्ट पर देखकर आपका भी सीना फख्र से ऊंचा हो जाएगा. और जो हम छोटे छोटे उम्र में बच्चों को धकेल देते हैं ना, ये नहीं होगा.
1: जी
0: और अगर
1: बिल्कुल
0: अर्चना हम भी अगर आसपास देखें, अगर हमें भी ऐसे बच्चे नजर आए तो जैसे मैंने कहा कि
1: बिल्कुल
0: मदद
1: बिल्कुल
0: जरूर कर दें.
1: कहते हैं ना, मतलब अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ कार्य करना चाहती है, मैं तो अपनी महिलाओं को भी कहूंगी कि अगर वो अपना कुछ ठोस कदम उठाए, जो घर में बैठे हैं वो अगर अपने आसपास के बच्चों को जैसे ही ला करके पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं. मतलब फ्री कहते हैं ना, निःशुल्क पढ़ाई करवाओ, तो उसमें आपका भी आनंद कुछ और ही होता
0: और
1: है.
0: ये काम हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से भी कर सकते
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: क्योंकि वो कई बार देखे मैंने ऐसे बच्चे कि इतना इंटरेस्ट होता है लेकिन नहीं पढ़ पाते. अगर हमने थोड़ा उनको पढ़ा दिया और अगर उनकी ज़िंदगी अच्छे से निकल गई तो वो हमें दिल से दुआएं ही देंगे और हर मुकाम पे हमें वो याद करेंगे कि हमें फ़लाँ टीचर ने हमें पढ़ाया, फ़लाँ इंसान ने हमें पढ़ाया, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं.
1: जी बिल्कुल खुर्शीदा, क्योंकि ये बात वाकई में इतनी ज़रूरी है. एक आप किसी को खिला दो और एक इसको शिक्षा का ध्यान दो, वो बहुत अलग बात है.
0: अलग बात है,
1: क्योंकि शिक्षा जिंदगी भर याद रहती
0: साथ
1: है.
0: रहती है ना,
1: जी बिल्कुल
0: उसके सबसे सबसे बड़ा हथियार उसके पास है. जब वो जिंदगी जिएगा तो वो सबसे बड़े हथियार के साथ चलेगा, आगे कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा. और शिक्षा ही नहीं है तो वो क्या कर पाएगा.
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल.
0: जरूरी
1: तो
0: ये है कि मेरी सभी सखियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने आसपास भी देखो ऐसे बच्चे तो प्लीज प्लीज प्लीज उनकी मदद जरूर कर दें. और अब चले
1: जी बिल्कुल.
0: मेरी तरफ से सखियों के लिए ये पेशी खिदमत. किसी को क्या खबर कि किस कदर निहारती हूँ मैं उसे, मुझे चांद भी फीका लगता है मेरे महबूब के आगे.

0: देखो अर्चना, चलते चलते हम अपने लास्ट सेगमेंट पर आ पहुंचे हैं, है ना।
1: जी
0: सारी
1: हाँ
0: बातें कर ली, लेकिन थोड़ी सी बातें और बाकी हैं, तो उन्हें भी हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, उन्हें अधूरा क्यों छोड़ें। हम बात करते हैं थोड़े से पेड़ पौधों के बारे में, है ना। इंडोर पौधे घर की सजावट को प्राकृतिक और खुशनुमा बनाते हैं, तो हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स की ही आज।
1: जी हाँ, क्योंकि इंडोर प्लांट्स के बिना घर की खूबसूरती अधूरी है खुशी।

0: फिर तो खूबसूरती पूरी करेंगे, अधूरी हम कुछ भी नहीं रखेंगे।
1: जी
0: बात करते हैं स्नेक प्लांट की। यह सबसे लोकप्रिय और इंडोर प्लांट है जो कम रोशनी और कम पानी में भी आसानी से पनप जाता है। यह रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसकी बहुत बड़ी खासियत है ये, और घर की हवा को शुद्ध करता है। सबसे बड़ी बात है कि पानी के बिना भी रह सकता है, अगर हम कहीं चले गए पानी नहीं डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
1: जी बिल्कुल
0: और साथ ही साथ बात करें तो अरेका पाम, अपनी घनी हरी और फैदर जैसी पत्तियों के साथ यह पौधा घर को एक शानदार और उष्ण कटिबंधीय लुक देता है। यह एक बेहतरीन नेचुरल एयर ह्यूमिडिफायर भी है। और साथ ही बात करें तो हम मनी प्लांट को कैसे भूल सकते
1: जी
0: हैं, ये तो
1: बिल्कुल,
0: हमारा सभी का फेवरेट है। दिल
1: और
0: की
1: सबके यहाँ होता है
0: बिल्कुल
1: ज्यादातर।
0: दिल के आकार की हरी पत्तियों वाला यह पौधा हर घर की पसंद है। इसे आप टेबल पर या कहीं बास्केट में भी लगाकर घर में लटका सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सुना है इस पौधे के बारे में कि जहाँ ये होता है वहाँ पैसे बहुत होते हैं, तो सही जल्दी से उठिए और मनी प्लांट लगन लगाइए,
1: जी
0: मज़ा आ
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: बिल्कुल। और एरोहेड प्लांट, इन पत्तियों का आकार तीर की तरह होता है लेकिन ये बहुत घना होता है और इसमें पानी बहुत कम देते हैं खुर्शीदा, और बहुत निखरता है ये।
0: पीस लिली की बात करें तो इसकी गहरी हरी चमकदार पत्तियां और बीच में निकलने वाले सफ़ेद फूल बहुत आकर्षक लगते हैं। यह कम रोशनी वाले कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
1: जी हाँ, और व्हीपिंग फिंग चमकदार पत्तियों वाला पौधा है जो अपने आसपास की हवा को शुद्ध करता है और ये हल्के हरे रंग का भी होता है।
0: और साथ ही बात करें हम रबर प्लांट की तो इसकी बड़ी और चमकदार पत्तियां घर को प्रीमियम और मॉडर्न लुक देती हैं। इसे घर के लिविंग रूम में आप रखें, बहुत ही अच्छा लुक आएगा।
1: और एक और नाम बताती हूँ जो कि आपने सुना नहीं होगा, फिलोडेंट्रॉन। यह एक चमकदार के साथ साथ हरे रंग के पत्तों वाला पौधा है। इसे आप अपने घर के किसी भी कोने में रखोगे तो कोने की शोभा बढ़ाता है ये।
0: अब बात करती हूँ मैं स्पाइडर प्लांट के। नाम ही स्पाइडर है तो जाहिर सी बात है कि स्पाइडर जैसा ही दिखता
1: जी
0: होगा।
1: बिल्कुल।
0: पतली और लंबी पत्तियों वाला यह पौधा बहुत खूबसूरत और हवा साफ करने वाला होता है। यह शुरुआती बागबानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है अर्चना, मज़ा आएगा अगर हमारी सखियाँ इनको हमारे घर में लगाएंगी और इनका आनंद लेंगी। और साथ ही साथ एक प्लांट की बात करूंगी मैं, एलोवेरा ज़रूर लगाएं, ये
1: जी
0: बहुत ही
1: बिल्कुल।
0: फ़ायदेमंद होता है। तो चलें आगे फिर से। मुझे छोड़कर वो खुश हैं तो शिकायत कैसी, अब मैं उसे खुश भी न देखूं तो मोहब्बत कैसी।

0: होठों पे दोस्ती के फसाने नहीं आते, साहिल पे समुद्र के खजाने नहीं आते। उड़ने दो परिंदों को शौक से हवा में, फिर लौट कर ये जमाने नहीं आते, लेकिन हम लौट कर आएंगे इसी प्यारे से वादे के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। आइए

फिल्म संगीत के सेगमेंट में आपका स्वागत। स्वीकार कीजिए आपकी होस्ट और दोस्त संगीता का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत की राहों में कुछ ऐसा मुकाम आया, जिसे अपना समझा वही दूर नजर आया, फिर भी दिल ने दुआ दी उसे हर खुशी मिले, क्योंकि सच्चे प्यार में सिर्फ प्यार ही नजर आया। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं फिल्म संगीत के सेगमेंट को, और सबसे पहले आपको सुनाते हैं सजीव टंडन और परंपरा की आवाज़ों में आदि पुरुष फिल्म से ये गीत।

फिल्म केसरिया से, फिल्म ब्रह्मास्त्र से अगला गीत आपके लिए है अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

फिल्म संगीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग आप जुड़े हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मिस्टर एंड मिसेस माही से, जिसे आवाज़ दी है नीति मोहन, बनी और सागर ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाज़ों में, फिल्म सैयारा से।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं बॉर्डर 2 से ये गीत, जिसे गाया है विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ ने।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर के 2:10 हो चुके हैं और समय है विकास चर्चा सुनने का। तो आइए आपको सुनाते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का विषय है सिंगल विंडो, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम।

राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसका उद्देश्य उद्योगों और व्यवसायों को विभिन्न सरकारी अनुमतियां, लाइसेंस और मंजूरियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली का शुभारंभ 22 सितंबर 2021 को भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान किया गया।

नए उद्यमी, स्टार्टअप कंपनियां, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, भारतीय एवं विदेशी निवेशक, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की कंपनियां, इन ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं जो कि नया अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं या फिर जिनके पहले से उद्योग हैं और वो इस क्षेत्र में आगे काम करना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सेवाओं को एक मंच पर लाना है, निवेश को बढ़ावा देना है और ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है।

इसके सबसे बड़ी इससे जो बेनिफिट्स हुए हैं वह यह हैं कि सभी अनुमतियां और लाइसेंस एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो जाते हैं, समय और लागत की बहुत ज़्यादा बचत होती है, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता बढ़ती है, आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है, निवेशकों को सुविधा मिलती है और कागजी कार्यवाही काफ़ी कम हो जाती है। इन सभी कारणों के कारण हम इजीली कोई भी उद्योग शुरू कर सकते हैं।

0: इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं पर इस उद्देश्य की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसी कारण निर्भरता भी काफ़ी बढ़ गई है। डिजिटल जानकारी की कमी वाले लोगों को काफ़ी कठिनाई इस योजना के अंतर्गत देखनी पड़ रही है। कभी कभी तकनीकी समस्याएं या सर्वर संबंधी दिक्कतें भी उनका भी सामना करना पड़ता है और सभी विभागों का पूर्ण एकीकरण अभी भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम भारत में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे व्यापार शुरू करने से पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और तेज हो गया है। यद्यपि कुछ तकनीकी चुनौतियाँ हैं, फिर भी इसके लाभ अधिक हैं और भारत में निवेश को आकर्षक बनाने के लिए ये मदद कर रहा है। श्रोताओं, ये तो थी विकास चर्चा जो हमने अभी सुनी और हमने देखा कि कितना आसान होता है सभी उद्योगों का अगर तालमेल हो, सभी मंत्रालयों का अगर तालमेल हो तो उद्योग शुरू करना। और मीडियम वेव पर अब आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में दोपहर समाचार।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।

0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित

0: करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24 लाख रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे

0: प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 2:30 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम नानू भाई, राम राम।
1: राम राम अनुश्री भाई सा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम होनवा वाला हंगला किसान भाइया ने भी आपानो
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा।
0: देखो नानू भाई, कार्यक्रम रो टेम भी हो है और खेतीबाड़ी रे बारे में आपा बात करा हाँ और जानकारी भी देवा हाँ। तो देखो, खेतीबाड़ी में ने आपा आज एक महत्वपूर्ण विषय ने लेना आया, एक अलग तरह रो विषय है जणी में ने आपा बात करा कि खेतीबाड़ी जो है वणी में ने बाल श्रम रोकवारी जिम्मेदारी कंडी है और वो आपा किस तरह रोकी सका हाँ।
1: बिल्कुल सही कह रहा हो कि आज आपा देखो एक जन पे बात कर रहे हैं, वह आप पति की खेती में बाल श्रम रोकवारी जिम्मेदारी कंडी है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और जटे बड़ी संख्या में लोग देखो खेती पर निर्भर है और खेती में मेहनत करवा वाला किसाना रा देश रे विकास में महत्वपूर्ण योगदान वैसा। लेकिन कतरी बार आर्थिक कठिनाइयाँ, जागरूकता री कमी और सामाजिक कारणों के कारण बच्चा जो है वे देखो खेती बाड़ी रा काम में लाग जावे, अन्य जापा देखो बाल श्रम कई सका। हाँ
0: हाँ जी, बात ऐसा। देखो, बाल श्रम रो अर्थ है कि 80 उम्र में टाबरों काम करवानो जन्ना

0: दी ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: तो देखो अनुश्री भाई सही हो तो हुणियो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और हुणिया संदेश और अणु पहला देखो आप बात करें कि खेती में जो बाल श्रम है वरना आप कई प्रकार रोक सका
8: बिल्कुल सा देखो आप गीत पहले आप यो जानियो हो कि बाल श्रम टाबरा रा विकास रे वास्ते कतरो हानिकारक है और इन्हें रोकनो क्यों जरूरी है अबे आप यह बात करा कि खेती में बाल श्रम रोकवा रे वास्ते किसान प्रशासन और समाज कई कई कदम उठाई सके तो देखो सबू पहले अगर आप किसान आरी जिम्मेदारी री बात करा तो वे अपना खेता में कहीं भी टाबर ने मजदूरी नहीं करावे खेती रो काम कठिन और जोखिम भरियो वे कीटनाशकारो संपर्क भारी उपकरण रो उपयोग और लंबा समय तक टाबरा मेरेन काम करनो टाबरा रे स्वास्थ्य पे बुरो असर डाल सके है अनि वास्ते किसाना ने यो तय करनो है कि माने खेत मीने कणी भी बालक ने नहीं लेनो है वयस जो श्रमिक वे जो बनाने सापा काम माते लगा वाला
7: बिल्कुल सा और जड़े देखो विद्यालय रे अगर आप बात करा तो उनमें विद्यालय रे भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मार साहब नियमित रूप बच्चा ने उपस्थिति पर ध्यान देगा और स्कूल छोड़वा वाला बच्चा रे जानकारी बना रे परिवार और प्रशासन तक पहुंचाएगा तो कई सारा बच्चा जो है देखो बाल श्रम बचाया जा सके शिक्षा ही वो माध्यम है जो बच्चा रे बेहतर भविष्य रे और ले जावे है
8: देखो साहब प्रशासन और पंचायत में अगर आप बात करें तो बनाने भी समय समय माते जागरूकता अभियान चलावनो छावे गाँव में बैठ का रैलियाँ और जागरूकता वे जन जागरूकता कार्यक्रम रे माध्यम लोगों ने बाल श्रम रा दुष्परिणाम रे बारे में बतावनो है और अगर कटी बाल श्रम री सूचना मिले तो संबंधित जो अधिकारी है बनाने तुरंत कार्रवाई करनी छावे
7: बिल्कुल और अंडे लाल जटे बात करा तो सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्था जो है वनारी भूमिका भी अनेक क्षेत्र में सराहनीय है यह संस्था जरूरतमंद परिवार देखो सहायता करे और बच्चा ने शिक्षाओं जोड़वारो काम करे और समाज में जागरूक नागरिक भी ऐसा प्रयास में अपना सहयोग करने भागीदारी निभावे है
8: देखो सापा ने यू समझनो पहला कि हर टाबर देश रो भविष्य है अगर आज आप टाबर ने स्कूल स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण देवाला तो काले वो इस टाबर जो है देश का विकास में महत्वपूर्ण योगदान देवेला लेकिन अगर बालक जो बाल श्रम में फंस गयो तो वनडो भविष्य प्रभावित वे सके है
7: तो देखो आपा तो यो कहूंगा कि आपा सब संकल्प ला कि न तो स्वयं बच्चों देखो मजदूरी करवाऊंगा और न ही कणी अन्य ने ऐसा करवारे बात है कहूंगा क्योंकि बच्चा रे हाथा में देखो किताबा बेणी चावे औजार नी वनारे चेहरा पर मुस्कान बेणी चावे मजदूरी रो बोझ नी और यो एक विकसित और जागरूक समाज री पहचान बने है
8: ये बढ़िया सी जानकारी देखो नानू भाई

0: तो देखो अनुश्री भाई सही हो तो होने प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत। और देखो किसान भाई बहना ने अब कार्यक्रम में आपका ही जानकारी देना चाहिए रहा सा।
1: देखो सा अपना बात करी रहा कार्यक्रम में ने पांच पांच री जानकारियां देवा गीत सुनावा और देखो वो खेती बाड़ी रे संबंधित जानकारी रे लारे लारे अगर किसान आ रहे हित री कोई योजना वे तो वनडे बारे में भी आप जानकारी देवा। और आज आप किसान भाइयों बात कर रहा प्रधानमंत्री कुसुम योजना री कि या किसान आ रहे हित जुड़ी तक की एक असी महत्वपूर्ण योजना है जनरी जानकारी आप किसान भाइयों ने देवा। हाँ
0: बिल्कुल सही कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में जेटे बात करा तो कुसुम रो पूरो नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अणि योजना रो उद्देश्य किसानों ने सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है ताकि उन्हारी आय बढ़ावा में देखो सहायता प्राप्त हो सके।
1: देखो साहब भारत में खेती रे वास्ते सिंचाई घनी जरूरी है। कई किसान जो है डीजल और बिजली चलवा वाला पंपा रो उपयोग करे जनी वनारो खर्चो बढ़ जावे। अणी समस्या ने दूर करवा रे वास्ते भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना री शुरुआत की दी। अणी योजना रे तहत किसाना ने सौर ऊर्जा आधारित पंप उपलब्ध कराया जावे जनी कई एक सिंचाई रो जो खर्च है वो कम भी जावे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल सही। और जेटे देखो कुसुम योजना री आप बात कर रहे हैं तो अंटे अंतर्गत किसान अपने खेत में देखो सोलर पंप लगवा सके, सौर ऊर्जा सूर्य री रोशनी प्राप्त हुए, अंडे वाते अण में ईंधन री आवश्यकता नहीं हुए, अणु डीजल पर वे वालो खर्च भी बचे और किसान लंबा टाइम तक देखो अपने कम लागत में सिंचाई कर सके है।
1: अणि योजना री एक विशेषता यह भी है कि किसान अपना अनुपयोगी जो बंजर भूमि है वटे सोलर प्लांट स्थापित कर सके। अणि यू कही है कि बिजली रो उत्पादन वेवे और अतिरिक्त बिजली ने वा बिजली कंपनियां ने वेचिन किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सके। अणि प्रकार यह योजना जो है किसान भाइया ने दोहरों लाभ देवे है कि सिंचाई री सुविधा और अतिरिक्त आमदनी भी वनाने मिल जावे है।
0: प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दीदो जावे। किसानों ने कुल लागत रो केवल एक हिस्सों ही वहन करना पड़े और कई राज्य में तो बैंक ऋण री सुविधा भी उपलब्ध कराई जावे जणों की किसान जो है वहाँ पे आर्थिक बोझ भी कम पड़े है।
1: और देखो पर्यावरण जुड़ी तक की बात करें तो यह योजना जो है पर्यावरण संरक्षण में भी घनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। डीजल पंपा प्रदूषण फैले जबकि सौर ऊर्जा पूरी तरह स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा रो स्रोत है। अणि में कार्बन उत्सर्जन कम वेवे और हरित ऊर्जा ने बढ़ावा मिले है।
0: कुसुम योजना देखो ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ावा रो भी काम कर रही है। जनिक क्षेत्र में बिजली री उपलब्धता कम वे बटे सौर पंप किसाना रे वाते बहुत उपयोगी सिद्ध भी आ रहा। अणु फसलारी सिंचाई समय पे वे पावे और उत्पादन में भी वृद्धि वे है।
1: किसान भाइया ने अणि योजना रो लाभ लेवा रे वास्ते अपने राज्य रा जो संबंधित ऊर्जा एजेंसी है कृषि विभाग है या ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन करनो वे आवेदन रे समय आवश्यक दस्तावेज छावे जो वे है आधार कार्ड भूमि संबंधी दस्तावेज और बैंक खाता री जानकारी आपने प्रस्तुत करनी पड़े है।
0: अंत में देखो आपा कह सका कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों रे बातें एक लाभकारी और दूरदर्शी योजना है। यह

0: ना खेती री लागत कम करे और किसाना री आय भी बढ़ावे है।
1: देखो, स्वच्छ ऊर्जा ने प्रोत्साहित करे या अन्य अलावा पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देवे है। अगर अधिक व अधिक किसान आ योजना रो लाभ उठावे तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोया ने मजबूत बनाई सका। हाँ
0: और देखो कार्यक्रम में या तो दीदी जानकारी और को तो चलता चलता एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और होना सा
1: बिल्कुल होना सा।

0: तो देखो सा आपा बढ़िया सो गीत सुने और गीत सुनिन पाचो कार्यक्रम में आया हाँ। तो देखो नानू भाई अबे आपा देखा हाँ कि बातचीत करवार वास्ते तो नरी है और जानकारियाँ भी आपने पास नरी वे, लेकिन घड़ी हमें देखा तो आपने घड़ी कह रही है कि अबे आपने किसान भाइयों विदा लेनी पड़ी। तो चाला सा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। आइए अब सुनते हैं हिंदी में दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आपके साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति कल मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ उन्होंने ये याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने

0: तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी की परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के झंडे वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत की PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 3:05 हो चुके हैं। हमारी दोपहर सभा के प्रसारणों को यहीं देते हैं विराम। साय 5 बजे सायकालीन प्रसारणों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: वैद्य ही एक सवाल है, अगर एक दिन के लिए गूगल बंद हो जाए ना, तो लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की होगी?
1: रास्ता भूलने की?
0: नहीं, लोगों को ये टेंशन होगी कि अब आर्ग्यूमेंट कौन जीतेगा, क्योंकि आजकल आधे लोग गूगल जानकारी लेने के लिए नहीं, अपनी बात को सही साबित करने के लिए करते हैं।
1: और बाकी आधे लोग एक चीज सर्च करने जाते हैं और 2 घंटे बाद खुद भी भूल जाते हैं कि सर्च क्या करना था।
0: लेकिन मजेदार बात यह है वैदेही, कि इन्फॉर्मेशन की इस भीड़ में भी कुछ कहानियां ऐसी होती है जो रुक कर सुनने लायक होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, यहाँ तक कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनके बारे में सुनकर लगता है कि रियलिटी कभी कभी इमेजिनेशन से भी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है।
1: और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे आसपास हर दिन मौजूद रहती है, लेकिन उनकी कहानी शायद हम जानते ही नहीं है। कभी कोई परंपरा समय के साथ एक पूरी इंडस्ट्री बन जाती है, कभी कोई संघर्ष प्रेरणा की मिसाल बन जाता है, और कभी किसी एक इंसान का हौसला लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन जाता है।
0: तो आज का सफर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां फैक्ट्स भी होंगे, स्टोरीज भी, और कुछ ऐसे नाम जिन्होंने अपने काम से एक अलग पहचान बनाई है, और कुछ ऐसे पहलू भी जो शायद रोज दिखाई देते हैं लेकिन उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता।
1: मतलब अगले कुछ मिनटों में कहीं कल्चर मिलेगा, कहीं करेज, कहीं क्रिएटिविटी, और कहीं ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर लगेगा अरे ये तो हमें पता ही नहीं था।
0: तो जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज की ये बातचीत सिर्फ जानकारी नहीं, कहानियों, अनुभवों और कुछ अनोखे नजरियों का भी होने वाला है। जी हाँ, मैं हूँ आरजे चिन्मय और मेरे साथ है आरजे वैद्य ही, और आप सुन रहे हैं युववाणी, जहाँ यूथ की सोच है, आइडियाज है और एनर्जी नॉन स्टॉप है।
1: तो चलिए शुरू करते हैं।

0: up.
1: नन्हे हाथों में किताबें हों, सपनों की नई उड़ानें हों, न हो बोझ मजदूरी का, हर बच्चे की बस मुस्कानें हों।
2: बचपन खेलों में खिलता है, ज्ञान से जीवन मिलता है। आओ मिलकर ये प्रण ले, बाल श्रम का अंत करें।
1: आज 12 जून को पूरे विश्व में हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें उन लाखों बच्चों की याद दिलाता है जिनके हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, लेकिन मजबूरी में वे काम करने के लिए विवश हैं।
2: बचपन जीवन का वो सुंदर और महत्वपूर्ण चरण होता है। यह वह समय है जब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए और अपने सपनों को आकार देना चाहिए। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लाखों बच्चे गरीबी, सामाजिक असमानता और अन्य कारणों के चलते बाल श्रम करने के लिए मजबूर है।
1: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वाली यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य लाखों लोगों को बाल श्रम की समस्या के प्रति जागरूक करना और इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है।
2: बाल श्रम केवल बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं करता, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में भी बाधा डालता है। कई बच्चे कारखानों, दुकानों और खेतों में घरेलू कार्यों में लंबे समय तक काम करते हैं और इससे उनकी शिक्षा जो है वो पीछे छूट जाती है और उससे उनके भविष्य पे काफी गहरा असर पड़ता है।
1: जी हाँ, भारत सहित कई देशों में बाल श्रम को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। सरकारें, सामाजिक संगठन और नागरिक मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार मिले।
2: बिल्कुल वैदेही। और बाल श्रम केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यदि हम किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखते हैं, हमारे

0: आसपास तो हमें संवेदनशीलता के साथ उसकी सहायता करने और संबंधित अधिकारों की जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए।
1: आज के दिन आइए हम संकल्प लें कि हम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण करने में योगदान करेंगे जहां हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पा सके।
0: क्योंकि बचपन काम करने के लिए नहीं, सीखने और सपने देखने के लिए होता है। और इस साल की जो हमारी इस दिन की थीम है वो है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रंस एंड डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स।
1: इस वर्ष की थीम खेलों की भाषा का यूज करते हुए उन मजबूत संदेश को देती है, जैसे किसी खेल में नियम तोड़ने पर खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर दिया जाता है, वैसे ही समाज को बाल श्रम को पूरी तरह अस्वीकार करना चाहिए। हर बच्चे का अधिकार है कि वह स्कूल जाए, खेले, सीखे और सुरक्षित बचपन को जो है वो जिए। जबकि परिवारों को ऐसी समाज सम्मानजनक आजीविका मिले जिसमें बच्चों को वो अच्छा काम करना सिखा सकें और साथ ही साथ अच्छी शिक्षा भी दे पाएं। तो चलिए अब आपको इसी टॉपिक पर सुनवाते हैं गजेंद्र सिंह।

0: अस्वीकार करना चाहिए। हर बच्चे का अधिकार है कि वह स्कूल जाए, खेले, सीखे और सुरक्षित बचपन को जो है वो जिए। जबकि परिवारों को ऐसी समाज सम्मानजनक आजीविका मिले जिसमें बच्चों को वो अच्छा काम करना सिखा सकें और साथ ही साथ अच्छी शिक्षा भी दे पाएं। तो चलिए अब आपको इसी टॉपिक पर सुनवाते हैं गजेंद्र सिंह राठौड़ की आशिता जैन, जो कि एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बीच एक बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं आशिता जैन। आप समाजसेवी हैं और बाल श्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आप कार्य करती हैं और साथ ही साथ बाल श्रम पर काफ़ी विगत कई वर्षों से आप जुड़े हुए हैं। इनसे हम आज जानेंगे कार्यक्रम में किस तरह से जो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है इसके साथ साथ क्या कार्य इनके संस्था द्वारा भी किए जाते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
2: धन्यवाद
1: आशिता। अगर हम बात करें जो विश्व बाल श्रम दिवस है, सबसे पहले ही बात करें कि ये दिवस हमें मनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई।
2: सो मैं शुरू करूँ तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को हर साल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने की थी, जिसका उद्देश्य था कि इस मुद्दे पे, जो बाल श्रम इतना गंभीर मुद्दा है, उस पे कैसे वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जाए और साथ ही साथ विभिन्न संगठन, सरकारें जो इसकी रोकथाम के लिए काम कर रही हैं, वो कैसे एक मंच पे आकर इसकी रोकथाम के लिए, इसके उन्मूलन के लिए काम कर सके। तो ये उद्देश्य था, उसी उद्देश्य के साथ 2002 से इसको हर साल मनाया जाता है।
1: अच्छी था, क्योंकि आप खुद युवा हैं और अगर हम देखा जाए तो जब युवा अवस्था से पहले, जिसको हम बालक की श्रेणी कहें या बालिका की श्रेणी कहें, किशोरावस्था कहें, जब हम पढ़ने लिखने की उम्र होती है और इस समय में जब हम देखते हैं किसी को काम करते हुए कहीं चाय के ठेलों पर, कहीं होटल्स पर, कहीं फैक्ट्रियों में, तो आपको क्या लगता है कि युवा होने के नाते कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा देश युवा है, युवाओं का देश है, हमें विकसित देश की तरफ, विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ना है, और एक तरफ आपको जब ये पिक्चर दिखाई देती है तो कैसा महसूस होता है?
2: तो ये बहुत ही दुखद परिस्थिति है कि जहाँ हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, वहीं हमारी बहुत बड़ी आबादी आज भी इसमें लिप्त है, जिसके पीछे गरीबी, अशिक्षा और ऐसे कई कारण हैं जिससे हम लड़ सकते हैं और उन बच्चों को वापस मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। इसी को मैं इस बात के साथ भी जोड़ना चाहूँगी कि जैसे ILO हर साल एक थीम निकालता है, उस थीम के ऊपर उस पूरे वर्ष कार्य किया जाता है। तो इस साल का थीम बहुत मिलता जुलता है आपके प्रश्न से, रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर। मतलब जैसे खेल में, किसी खेल में हम रेड कार्ड दिखाते हैं, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, वैसे ही रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, बच्चों की जगह हमारे कार्यस्थल पे नहीं बल्कि स्कूल में और खेल के मैदानों में है, और वहीं बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो उनको एक इक्वल पे मिले और फिर वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाए ताकि देश भी विकसित हो और साथ ही साथ बच्चों को बाल श्रम में ना जाना पड़े।
1: आशिता, आपने एक बात कही, गरीबी और अशिक्षा इसका एक तरीके से एक कारण है, लेकिन अगर हम देखें जो सरकारी प्रयास हुए हैं और सरकारों द्वारा शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया है और जो शिक्षण संस्थान है, सरकारी स्कूल या विद्यालय जिनको हम कह रहे हैं, वहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था है, मिड डे मील की भी व्यवस्था की जा रही है उनके लिए, लेकिन फिर भी ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनती है कि जो बच्चे स्कूल में दिखने चाहिए वो हमें फैक्ट्री में, होटल्स में, रोड किनारे ढाबों पर या चाय के ठेलों पर साफ सफाई करते या काम करते हुए दिखते हैं? आप इसके पीछे क्या मतलब कारण मानते हैं? और
2: इसके पीछे दो कारण मैं मानती हूँ। पहला तो ये कि आज भी ग्रामीण परिपेक्ष में या वहाँ ऐसा माना जाता है कि जितने हाथ उतनी कमाई के साधन होंगे तो अच्छा रहेगा, जितना बड़ा परिवार। तो आज भी लोगों का ये मानना है कि भली शिक्षा मुफ्त कर दी गई है पर एक उम्र के बाद लड़के या लड़की से अपेक्षा की जाती है कि आप खुद ही अपने लिए कमाएं और खुद ही खाना लेकर आएं। इसलिए एक तो ये कहा गया है और साथ ही साथ आज जो मुफ्त शिक्षा है वो 14 साल तक के बच्चों के लिए ही है, उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा नहीं है। और जब हम बाल श्रम की बात करते हैं तो अनुमान बच्चे 14 साल से ऊपर किसी फैक्ट्री में या किसी कार्यस्थल पे लगे हुए हैं। तो ये दो मुख्य कारण हैं जहाँ फ्री शिक्षा है हमारे पास, वो एक एज तक ही है, सीमित है, तो उसके ऊपर के बच्चे कहीं ना कहीं इस साइकिल में फंस जाते हैं, और दूसरा जो एक सामाजिक सोच है वो इसको कहीं ना कहीं बल देती है।
1: तो आशिता, जैसे क्योंकि आप संस्था से जुड़ के या फिर NGO के रूप में आप कार्य कर रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जब आप देखते हैं कि हाल ही में जैसे कई जगह से आपने फैक्ट्री में से आपने 70 से 80 बच्चों को छुड़वाया आपकी संस्था ने, और जब हम उनकी स्थिति को देखते हैं, कई लोग, उनके परिवार उनको पालने के समर्थ नहीं है। कई जगह ये भी है कि या तो वो बिल्कुल ही अपने दादा दादी

0: नाना नानी के यहाँ पल बढ़ रहे थे, उनके माता पिता नहीं है, और कहीं कहीं तो यह स्थिति है कि उनका कोई भी नहीं इस दुनिया, बिल्कुल वो ऑर्फन है, अनाथ है। तो जब ऐसे बच्चे आते हैं बाल श्रम से मुक्त करवा के आप लाते हैं, तो किस तरह से आप उनकी टेक केयर करते हैं, किस तरह से उनको गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस या फिर आपकी संस्था के द्वारा असिस्टेंट दिया जाता है और उनको वापस एजुकेशन से जोड़ा जाता है?
1: तो संस्था दोनों ही तरीके से काम कर रही है। पहले चरण में मैं बात करूं कि जो बच्चा आज ग्राम पंचायत में ही है पर उसकी कहीं संभावना हो सकती है कि वो आज से, अगर आज ही उसका संरक्षण नहीं किया गया तो एक दो साल बाद शायद वो हमें बाल श्रम में मिलेगा। जो आप कह रहे हैं दादा दादी के साथ है जिसका एक कोई आय नहीं है, माता पिता नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ हैं सरकार की। तो संस्था ये कोशिश करती है कि ऐसे बच्चों को ग्राम स्तर तक जाके, तो ऐसे जो एक्टिव सरपंच हैं, वार्ड पंच है, जो हमारी कमिटीज़ बनी हुई हैं, उनके माध्यम से हम उन बच्चों को चिन्हीकरण करें ग्राम पंचायत पे, और ताकि हम उनको सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ पाएँ। जो बच्चा स्कूल से वंचित है उसके हम रेगुलर काउंसलिंग करके स्कूल से जुड़वा पाएँ। तो एक तो है कि बच्चा सिस्टम में आने से पहले ही हम उसका संरक्षण कर दें ताकि उसको सिस्टम में आना ना पड़े, मतलब बाल श्रम में जाना ना पड़े। दूसरी जो आपने बात कही, बाल श्रम में जब वो बच्चा आ गया है और जब वो रेस्क्यू हो गया है, तो इसका हमारे यहाँ जो कानून है उसमें एक पूरी प्रक्रिया दे रखी है कि बच्चा जब रेस्क्यू होगा तो एक CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जिसके सामने वो प्रस्तुत होगा। तो जब वो प्रस्तुत होता है तो CWC उसका आकलन करती है कि इस बच्चे की क्या परिस्थिति है, कि घर वापस जाने भेजने लायक इसके लिए अनुकूल वातावरण है या नहीं, और अगर नहीं होता है तो हमारे यहाँ जो शेल्टर होम्स बने हुए हैं बच्चे को वहीं फ्री शिक्षा खाने के साथ वहीं रखा जाता है। और अगर बच्चे को देखकर लगता है CWC को कि नहीं अपने माता पिता के साथ जाकर रह सकता है, तो फिर CWC उसको वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ भेज देती थी। उस केस में संस्था बच्चे का रेगुलर फॉलोअप करती है, स्कूल में उसको एनरोलमेंट करवाती है, माँ बाप की काउंसलिंग करती है ताकि वो बच्चा वापस उस बाल श्रम की साइकिल में ना पहुँच पाए।
0: अच्छा, तो अगर हम बात करें जिस बाल श्रम के दलदल में अगर बच्चा फंसा है और उस स्थिति पे अगर हम विचार करें, तो उस समय क्या मना स्थिति होती है बच्चों की, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या फिर यूँ कहें शिक्षा के स्तर पे वो ऐसी अवस्था से गुजर रहा होता है और वो शायद किसी को कह भी नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति से जब आप बच्चों को छुड़ा के लाते हो तो किस तरह से आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं और वो क्या अपने साथ बीती हुई ऐसी क्या बातें बताते हैं जो सच में समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है?
1: सबसे पहले तो जब हम बच्चे को, हम जब भी किसी बच्चे को रेस्क्यू करते हैं या छुड़ाते हैं, तो हम सबसे पहले हम उसे ये बताते हैं कि वो अपराधी नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो सबसे पहला जो काउंसलिंग का पार्ट होता है वो यही होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप सही हैं, आपसे ये काम करवा रहे थे इसलिए आपको यहाँ से रेस्क्यू करके पढ़ाई से या किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले तो उसको कॉन्फिडेंस में लेना कि वो गलत नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत सहम जाते हैं, तो हम पहले उस पर काम करते हैं। कई कई बार हमने ऐसे बच्चे भी रेस्क्यू करे हैं जो इस स्थिति में थे जब 7-8 साल के थे, वो 2-3-4 साल से बेट बकरी चरा रहे हैं। जब हमने उनकी काउंसलिंग करी तो उससे पूछा गया कि कहाँ अच्छा लग रहा है, जंगल में जाके अच्छा लगता था क्या, जी हाँ अच्छा लग रहा है। तो उस बच्चे ने बोला नहीं, मुझे यहीं रहना है और अब मुझे जंगल में नहीं जाना है। तो ऐसी जो मनस्थिति जब सामने आती है तो हमें लगता है कि जो हम एक जो सोच है हमारी कि नहीं खुद कमाएगा और खुद खाएगा, पर अगर उस बच्चे से बात करके बैठ के बात की जाए तो ये पता लगता है कि नहीं, वो बच्चा सच में पढ़ना ही चाहता है और जो उसकी उम्र है वो खेलना ही चाहता है। तो इन दो तरीके से हम लोग उस पर,
0: एक बात पर और अगर गौर किया जाए, ये देखा भी गया है, लिखा पढ़ा भी गया है कि आमतौर पर बाल श्रम की आड़ में यौन अपराध भी उनके साथ होते हैं, यौन हिंसा के भी शिकार हुए हैं कई बार, चाहे वो बालक हो या बालिकाएं हो। तो ऐसी स्थिति में तो जब वो बच्चे को जब आप लेके आते हो, रेस्क्यू करके आते हो, तो वो बिल्कुल ही वो दुनिया से बिल्कुल कट चुका होता है, और क्योंकि उसने एक अलग दुनिया देखी होती है वो सहम जाता है। क्या ऐसे केसेस भी सामने आते हैं, और अगर आते हैं तो उस ऐसी स्थिति में आप किस तरह से उनको गाइड करते हो?
1: इस स्थिति में भी जो प्रक्रिया है वो अमूमन सेम ही रहती है, बट जब हम लीगल कार्रवाई में जा रहे हैं, जब FIR में जा रहे हैं, तो जो हमारी फर्स्ट काउंसलिंग जो होती है हम लोगों की, उसमें हम उस बच्चे से बातचीत करते हैं, उसमें जो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स होते हैं वो उनसे बातचीत करते हैं। तो वो बच्चा बताता है कि मैं इतने टाइम से यहीं हूँ, या बच्ची बताती है मैं इतने टाइम से यहीं हूँ, मैं रात को इतनी बजे तक काम करता था, इतना मालिक मेरे साथ मारपीट करता था, दुर्व्यवहार भी करता था। तो जब बच्चे को कंफर्टेबल करते हैं तो वो अपने आप बताते हैं। तो जब हम FIR दर्ज करने जा रहे होते हैं तब हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब चाइल्ड लेबर की FIR दर्ज हो रही है और अगर उसके साथ ऐसी कोई बात उसने काउंसलिंग में कही है जो सामने आई है, चाहे वो यौन शोषण की हो, तो FIR भी उसमें डले, ताकि एक कानूनी कार्रवाई भी ज़रूरी है एम्प्लॉयर्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ के लिए। तो हम वो बात करते हैं और साथ ही साथ जब बच्चा क्योंकि और सेंसिटिव हो जाता है तो उसकी फिर काउंसलिंग, जैसे अगर मैं यौन शोषण की बात करूँ तो उसका फिर मेडिकल

0: कल हो गया, उस बच्चे की काउंसलिंग हो गई, परिवार से जुड़वाना हो गया, और कहीं उसको मारपीट के निशान तो नहीं है, मेडिकल की केयर तो नहीं है, तो वो सारी जो कानून में लिखा है और साथ ही साथ संस्था जो काम कर रही है, उन दोनों को मुद्दे रखते हुए कि बच्चा कैसे कंफर्टेबल हो पाए और साथ ही साथ उसके साथ जो गलत हुआ है उसको कानून में भी रिकॉर्ड हो ताकि फ्यूचर में कम केसेस हो पाए।
1: अच्छी तरह अगर, क्योंकि हम बाल श्रम निषेध की बात कर रहे हैं और कानून अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है और संस्थाएं और सरकारें अपना प्रयास कर रही है, लेकिन कोई आम व्यक्ति अगर किसी बच्चे को ऐसी स्थिति में देखता है और ये पाता है कि नहीं वो असहज है, वो 14 साल या उससे छोटा है या किशोर है, और अगर वो किसी को सूचित करना चाहे या कोई प्रशासनिक कदम उठाना चाहे, तो कौन कौन से ऑप्शंस खुले हैं?
0: जो सबसे आसान ऑप्शन है, अगर आप किसी भी बच्चे को जो आपको देख के लगता है कि किसी असमंजस में है या किसी परेशानी में फंसा हुआ है, बिना उसकी उम्र जांचे आपको लगता है कि अगर ये मेरा बच्चा होता और ये गलत है, तो आप 1098 पे आप कॉल कर सकते हैं। वो एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है जिसमें आपका, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपकी गोपनीयता भी रखा जाएगा, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। तो 1098 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है जहाँ आप बच्चे को आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैंने इस एरिया में बाल श्रम होते हुए देखा, या कोई भी, ये सिर्फ बाल श्रम के लिए नंबर नहीं है, कोई भी अपराध अगर बच्चे के खिलाफ होता हुआ दिखता है तो आप इस पर डाल सकते हैं। और फिर दूसरा, अगर आपके पास इतने संसाधन हैं और आप इतने सक्षम हैं, तो आप नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, हम जैसी संस्थाएँ जो काम कर रही हैं जिनका एक हेल्पलाइन नंबर होता है, ऑफिस है, वहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं।
1: जाते जाते कार्यक्रम में आशिता, जो आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, उस पर जितने भी श्रोता या जो भी हमें सुन पा रहा है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और ये बाल श्रम के खिलाफ जो ये मुहिम है ये ज़्यादा सुदृढ़ हो सके?
0: बस यही कहना चाहूँगी कि जब हम कोई किसी और बच्चे को काम करते हुए देख के तो हमें लगता है ठीक ही तो हो रहा है, कमा रहा है और खा रहा है, पर जब हम हमारे बच्चे को सोचेंगे तो शायद हम उस परिस्थिति में ना सोचें। तो जब भी आपको ऐसा कोई बच्चा बाल श्रम में करे तो उसको अपने घर के बच्चे की तरह सोच के देखें कि अगर हमारा बच्चा इस उम्र में काम करने जाएगा तो हमें सही लगेगा, और अगर नहीं तो वो बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है, आप उसे रिपोर्ट करें ताकि उस बच्चे को सरकार ने जो भी कानूनी व्यवस्था बनाई है उससे उसको सहायता मिल पाए।
1: तो आप थे आशिता जैन और सामाजिक कार्यकर्ता, और आज कार्यक्रम में आपने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: तो अभी आप सुन रहे थे गजेंद्र सिंह राठौर की आशिता जैन से बाल श्रम निषेध दिवस पर बातचीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वैद्य ही एक बात बताओ कि तुम्हारी वार्डरोब में कितनी साड़ीज होंगी?
3: मेरे पास तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मम्मी और नानी की साड़ीज भी जोड़ ली जाए तो शायद पूरा कबर्ड छोटा पड़ जाएगा।
2: और मजेदार बात तो ये है कि हर साड़ी के साथ एक कहानी हमें बिल्कुल फ्री मिलती है कि ये शादी में पहनी थी या किसी खास मौके पर ली थी। ये वाली मेरी सबसे फेवरेट है, मतलब साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती, उसके साथ हमारी मेमोरीज भी अटैच होती है।
3: सच में, और शायद इसी वजह से साड़ीज भी कभी जो है आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। ट्रेंड बदलते रहते हैं, डिजाइन बदलते रहते हैं, लेकिन साड़ी की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं नहीं जाती है।
2: लेकिन वैसे ही एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, हम साड़ीज को अक्सर ट्रेडिशन से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन आज साड़ी इंडस्ट्री खुद एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्टोरी बन चुकी है। इसके पीछे सिर्फ फैशन नहीं बल्कि लाखों आर्टिस्ट, वीवर्स, डिजाइनर्स, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस जुड़ चुके हैं।
3: बिल्कुल, इंडिया में अलग अलग राज्यों की अपनी वीविंग ट्रेडिशंस हैं। बनारसी, कांजीवरम, बांधनी, पटोला, चंदेरी, महेश्वरी, हर साड़ी सिर्फ डिजाइन नहीं अपने क्षेत्र की पहचान भी लेकर चलती है।
2: और यही चीज तो इसे सबसे ज्यादा यूनिक भी बनाती है कि अगर कोई बनारसी साड़ी देखे तो इसे सिर्फ एक कपड़ा नहीं देखता, उसे बनारस की क्राफ्टमैनशिप दिखाई देती है। अगर कोई बंधानी देखे तो उसमें राजस्थान और गुजरात के आर्टिस्ट की ट्रेडिशनल एक आर्ट दिखाई देती है।
3: और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज भी कई साड़ीज ऐसी हैं जिन्हें बनाने में दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते और महीने तक का समय लग जाता है। यानी एक साड़ी के पीछे सिर्फ मशीन नहीं, किसी आर्टिस्ट की स्किल और मेहनत भी होती है।
2: लेकिन अब कहानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ जाती है। पहले साड़ी का जो बिजनेस था वो मोस्टली ट्रेडिशनल स्टोर्स तक ही लिमिटेड था, लेकिन आज यूथ इसमें इनोवेशन शुरू कर चुका है। इंस्टाग्राम की स्टोरीज हो, ऑनलाइन बुटीक्स, कस्टमाइज्ड कलेक्शन और लाइव सेलिंग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू साड़ी इंडस्ट्री अब पूरी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश कर चुकी है।
3: और यही रीज़न है कि आज बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं। कई लोग घर से स्मॉल बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कई डिजाइनर्स ट्रेडिशनल वीविंग को मॉडर्न फैशन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और कई स्टार्टअप्स लोकल आर्टिस्ट को डायरेक्टली कस्टमर्स से जो है कनेक्ट कर रहे हैं।
2: मतलब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन दोनों एक साथ चल रहे हैं, और ऑनेस्टली यह इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक अच्छा एग्जांपल भी है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ नए इंडस्ट्रीज बनाना नहीं होता, पुरानी इंडस्ट्रीज को नए तरीके से आगे बढ़ाना भी होता है।
3: जी हाँ, और आपको पता है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा साड़ी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। साड़ी इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है और 2029 तक इसे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू जो है इसकी वो लगभग 1.58 बिलियन US डॉलर्स तक पहुँचने का अनुमान है। साड़ी मैन्युफैक्चरिंग के मेजर हब्स में सूरत, जहाँ सिंथेटिक और डिजाइनर साड़ीज का हब है, वाराणसी की बात करें तो बनारसी

0: कांचीपुरम कांचीपुरम जो है ट्रेडिशनल सिल्क साड़ीज के लिए जाना जाता है, और कोलकाता हैंडलूम साड़ीज में जो है शामिल है। ये इंडस्ट्री 10,000 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जरिए चलाई जाती है। और आज इंडियन साड़ी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, दुनिया के कई देशों में इंडियन कम्युनिटीज जो है ट्रेडिशनल साड़ीज को प्राउडली पहनती है। इंटरनेशनल फैशन इवेंट्स में भी इंडियन टेक्सटाइल वर्क्स जो है काफ़ी अप्रिशिएट होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक्सपोर्ट्स के जरिए इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट तक पहुंच चुका है। सोचो कि एक आर्टिस्ट अपने लूम में बैठकर काम कर रहा हो और वही प्रोडक्ट हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में पसंद किया जा रहा हो, अपने आप में ही ये काफ़ी इंस्पायरिंग बात है।
0: लेकिन हर इंडस्ट्री की तरह साड़ी इंडस्ट्री के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं। मशीन मेड प्रोडक्ट्स की कंपटीशन, चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट की डिक्रीजिंग नंबर्स जैसी बातें भी सामने आती रहती हैं।
1: सही कहा, और शायद यही वजह है कि हैंडलूम और ट्रेडिशन वीविंग को सपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ये एक बिजनेस नहीं है, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज का भी हिस्सा है।
0: तो साड़ी सिर्फ एक आउटफिट नहीं है, ये कल्चर भी है, क्राफ्टमैनशिप भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी भी है।
1: और शायद यही वजह है कि साड़ी इंडस्ट्री को देखकर ये समझ में आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा फैक्ट्रीज और मशीन्स की कहानी नहीं होती, वो कई बार उन हाथों की भी कहानी होती है जो परंपरा और आधुनिकता को साथ में जोड़कर आगे बढ़ाते हैं। और शायद यही है उभरते भारत की खूबसूरती, जहाँ ट्रेडिशन भी साथ चलता है और इनोवेशन भी।

0: वैसे ही हम सब ने सर्वाइवल स्टोरीज तो बहुत सुनी है, मूवीज़ में भी देखा है कि कहीं कोई इंसान मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाता है और फिर हिम्मत के दम पर वापस लौट आता है। लेकिन कभी कभी रियल लाइफ में ऐसी कहानी होती है जिसे सुनकर व्यक्ति का विश्वास करना मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल चिन्मय, और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उनकी कहानी ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्लेन क्रैश है, घना जंगल है, कई दिनों तक अकेले सर्वाइवल है, और सबसे बड़ी बात, ये सब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि रियलिटी है।
0: हम बात कर रहे हैं जूलियान कोएप्के की, जिनकी जिंदगी की कहानी आज भी दुनिया की सबसे इनक्रेडिबल सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है।
1: जूलियान का जन्म जो है वो 10 अक्टूबर 1954 को पेरू में हुआ था। उनके माता पिता दोनों साइंटिस्ट थे और बचपन से ही उनका प्रकृति और जंगलों से गहरा परिचय था।
0: लेकिन 24 दिसंबर 1971 में उनकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जूलियान अपनी माँ के साथ लांसा फ्लाइट 508 से यात्रा कर रही थी, तभी विमान मौसम खराब होने की वजह से फंस गया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। विमान पर बिजली गिरी और वो हवा में ही टूटने लगा। हजारों फीट की ऊंचाई से लोग नीचे गिरने लगे। उस हादसे में विमान के लगभग सभी यात्री मारे गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से जूलियान जीवित बच गई।
1: लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्लेन क्रैश से बच जाना ही काफी नहीं था। जूलियान खुद को अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच घायल अवस्था में अकेला पाती हैं। उनकी कॉलर बोन चोटिल थी, शरीर पर कई घाव थे और आसपास सिर्फ घना जंगल था। न कोई रास्ता, न कोई मदद और न कोई संपर्क।
0: और सोचो वैद्य ही, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे जैसे बड़े लोग भी घबरा जाते हैं, लेकिन जूलियान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने माता की और अपने पिताजी की एक बात याद रखी कि अगर जंगल में कोई छोटी सी धारा का पानी का रास्ता मिले तो उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अक्सर वे इंसानी बस्तियों तक पहुंचती है। और यही सोचकर उन्होंने एक छोटी सी स्ट्रीम को फॉलो करना शुरू कर दिया।
1: जी हाँ, और लगातार कई दिनों तक जूलियान जंगल में चलती रही। रास्ते में कीड़े मकौड़े, भूख, थकान और चोटें थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बारिश का सामना किया, जंगल के खतरों का सामना किया और उम्मीदों को जिंदा रखा।
0: और आखिरकार 11 दिनों तक जंगलों में भटकने के बाद एक छोटी सी नाव में उन्हें कुछ स्थानीय लोग मिले, जिन्होंने उनकी मदद की और बाद में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस तरह जूलियान उस हादसे की एकमात्र सर्वाइवर बनी।
1: जी हाँ, इतनी बड़ी घटना के बाद भी जूलियान ने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ उस हादसे तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने आगे पढ़ाई की और अपनी माँ की तरह बायोलॉजी के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने रेन फॉरेस्ट इकोलॉजी और बहुत सारे और भी टॉपिक्स पर रिसर्च किया और इन्वायरमेंटल साइंस में योगदान भी दिया।
0: यानी जिस जंगल ने उनकी परीक्षा ली थी, बाद में वही जंगल उनके अध्ययन और कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना। ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक बात है।
1: जूलियान की कहानी पर कई डॉक्यूमेंटरीज और बुक्स भी बनाई गई हैं। उनकी आत्मकथा व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई काफी चर्चित रही, जिनमें उन्होंने अपने अनुभवों को विस्तार से साझा किया।
0: और शायद यही वजह है कि आज भी उनकी कहानी सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं मानी जाती, बल्कि करेज और रिलायंस और होप की मिसाल के रूप में देखी जाती है।
1: जी हाँ, जूलियान की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हिम्मत और उम्मीद बनी रहे तो रास्ता निकल ही आता है।
0: और शायद इसी वजह से उनका नाम दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग सर्वाइवल स्टोरीज में लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मुश्किल समय में कभी भी हार ना मानने का जज्बा होता है, और यही जज्बा साधारण लोगों को असाधारण बना देता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वैसे ही फिल्मों की दुनिया भी बड़ी दिलचस्प होती है। हर हफ्ते कुछ नई कहानियां बड़े पर्दे पर आती है, कुछ नए किरदार लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, अच्छी अभिनय कला की अहमियत।
4: बिल्कुल चिन्मय, नई फिल्में आती रहती है, नए सितारे भी आते रहते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका नाम समय के साथ और बड़ा होता जाता है। आज हम पहले बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ चर्चित फिल्म रिलीजेस की, और फिर मिलेंगे साउथ इंडियन सिनेमा की ऐसी दिग्गज अभिनेत्री से जिनका योगदान आज भी याद किया जाता है।
3: तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की नई फिल्मों से। रोमांस पसंद करने वाले दर्शकों के लिए है जवानी तो इश्क होना ही है। चर्चा में है वरुण धवन की इस फिल्म को लेकर यूथ ऑडियंस में अच्छा बज देखने को मिल रहा है, और इसके सॉन्ग्स भी पहले से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।
4: वहीं मैं वापस आऊंगा भी काफी चर्चित रिलीजेस में से एक मानी जा रही है। दिलजीत दोसांझ और सरवारी अभिनीत यह फिल्म भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित पीरियड ड्रामा है। इसके निर्देशन और संगीत को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है।
3: साउथ सिनेमा के फैंस के लिए भी यह हफ्ता काफी खास होने वाला है, क्योंकि सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर 2 भी काफी चर्चा में है। पहले फिल्म की सफलता के बाद इस सीक्वल से लोगों को काफी उम्मीदें बढ़ चुकी है। एक्शन और एंटरटेन पसंद करने वाले दर्शकों के लिए इस फिल्म पर काफी नजर रहेगी।
4: अगर हॉरर जॉनर की अगर हम बात करें तो हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट भी रिलीज होने वाली है। विक्रम भट्ट की फिल्मों में अपना जो है अलग ऑडियंस बेस हमेशा से रहा है, और यह फिल्म भी सस्पेंस और हॉरर का मिश्रण लेकर आ रही है।

0: इसके अलावा कंगना रनौत की अभिनीत भारत भाग्य विधाता भी काफ़ी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान अस्पताल कर्मचारियों के साहस और संघर्ष की कहानी को सामने लाती है।
1: और साथ ही गवर्नर द साइलेंट सेवियर भी सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, यानी इस हफ्ते रोमांस, एक्शन, हिस्ट्री, हॉरर और ड्रामा लगभग हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ मौजूद ज़रूर है।
0: अब वैसे ही जब नई फिल्मों की बात हो रही है तो उन कलाकारों को भी याद करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। साउथ इंडियन सिनेमा में भी एक ऐसा ही नाम है जो है शारदा।
1: शारदा, जी हाँ, एक ऐसा नाम जो बहुत ही नोन है और आज तक भी याद किया जाता है। शारदा का वास्तविक नाम सरस्वती देवी था। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। अपनी दमदार अभिनय क्षमता के कारण साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में जो है उन्होंने अपनी जगह बनाई।
0: उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस रोल तक सीमित नहीं रही, उन्होंने ऐसे किरदार भी निभाए जो कि भावनात्मक रूप से मजबूत थे, जिनमें अभिनय की गहराई उनकी दिखाई देती है। यही कारण है कि दर्शकों के साथ साथ फिल्म समीक्षकों ने भी उनके काम को खूब सराहा।
1: और चिन्मय, उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो शारदा उन चुनिंदा भारतीय अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्हें 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि अपने आप में उनके अभिनय स्तर को दर्शाती है।
0: बिल्कुल, उस दौर में नेशनल अवार्ड जीतना किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि को माना जाता था, और इससे शारदा ने यह सम्मान नहीं एक बार नहीं 3 बार प्राप्त किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी प्रभावशाली रही होगी।
1: उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें महिला किरदार कहानी का केंद्र होते थे। उस समय यह बहुत बड़ी बात मानी जाती थी क्योंकि अधिकांश फिल्मों में महिलाओं की भूमिका सीमित होती थी, लेकिन शारदा ने अपने अभिनय से यह साबित किया कि मजबूत कहानियां और मजबूत महिला किरदार दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकती हैं।
0: फिल्मों के अलावा उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी उनका जो योगदान दिया, उसके बाद वे राज्यसभा की सदस्य भी रही, यानी उन्होंने कला और समाज दोनों क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई।
1: आज भी जब साउथ इंडियन सिनेमा की महान अभिनेत्रियों की बात होती है तो शारदा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। नई पीढ़ी भले ही उन्हें उनकी फिल्मों के माध्यम से जानती हो, लेकिन उनका योगदान जो है इंडियन सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है।
0: तो एक तरफ नई फिल्में जो दर्शकों के सामने नई कहानियां लेकर आ रही है, और दूसरी तरफ शारदा जैसे कलाकार जिनका नाम आज भी लोगों को प्रेरित करता है।
1: क्योंकि सिनेमा की असली खूबसूरती यही है, नई कहानियां आती रहती है लेकिन बेहतरीन कलाकार हमेशा याद रहते हैं।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां किसी महल या युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक छोटी सी डायरी के पन्नों में लिखी जाती है।
4: ऐसी ही एक कहानी है एनी फ्रैंक की, एक ऐसी किशोरी की जिसने कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपने विचारों के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रेरित किया।
3: एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी डायरी और कुछ ऐसे शब्द जो आज भी पूरी दुनिया को इंस्पायर करते हैं। एनी फ्रैंक का बर्थ 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकेट सिटी में हुआ। वे एक यहूदी परिवार से थी। जब जर्मनी में नाजी शासन के दौरान यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने लगा तो उनका परिवार नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम शहर में जाकर बस गया।
4: लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां भी हालत बिगड़ने लगे और 1942 में एनी फ्रैंक का परिवार एक गुप्त स्थान पर छिपकर रहने के लिए मजबूर हो गया। अपने 13th बर्थडे पर एनी को एक डायरी गिफ्ट में मिली थी। छिपे हुए जीवन के दौरान उन्होंने उसी डायरी में अपने विचार, भावनाएं, सपने, डर और अनुभव लिखने शुरू किए। उन्होंने लिखा कि कैसे वे बाहर की दुनिया को देखने के लिए तरसती थीं, अपने दोस्तों को याद करती थीं और एक सामान्य जीवन जीना चाहती थीं।
3: बिल्कुल, एनी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं लिख रही थी, वे एक किशोरी के रूप में अपने जीवन, अपने भविष्य और अपनी पहचान की खोज कर रही थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी डायरी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जब सब कुछ होने के बावजूद मैं अब भी मानती हूँ कि लोग दिल से अच्छे होते हैं। ये शब्द आज भी दुनिया के लोगों को प्रेरित करते हैं।
4: लेकिन अगस्त 1944 में किसी अज्ञात व्यक्ति की सूचना मिलने के बाद जो है एने और उनके सभी छिपे लोग जो हैं वो पकड़े गए थे। उन्हें विभिन्न यातना शिविरों में भेज दिया गया। एने और उनकी बहन को जर्मनी के ब्रगेन शिविर में जो है वो रखा गया, जहां 1945 की शुरुआत में बीमारी और कठिन परिस्थितियों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस समय एने केवल 15 वर्ष की थी।
3: युद्ध समाप्त होने के बाद उनके पिता ऑटो फ्रैंक परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में लौटे। उन्होंने एने की डायरी मिली, जिसके बाद उसमें उसे प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हुई और दुनिया के 70 से अधिक भाषाओं में अनुवादित की गई। आज एनी फ्रैंक की डायरी केवल एक पुस्तक नहीं है, यह इतिहास का जीवित दस्तावेज है। यह हमें युद्ध की भयावहता, भेदभाव के खतरों और मानव अधिकारों के महत्व को याद दिलाता है। दुनिया भर के लाखों स्टूडेंट्स एनी की कहानी पढ़ते हैं और उनसे साहस, आशा और मानवता का पाठ सीखते हैं।
4: जी हाँ, तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और अब हम बात करेंगे भारतीय महिला हॉकी की, एक ऐसी खिलाड़ी की जिन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। हम बात कर रहे हैं सबा अंजुम करीम की।
3: 12 जून को 1985 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कलाबाड़ी क्षेत्र में जन्मी सबा अंजुम का बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। बचपन से ही उन्होंने खेलों में रुचि

0: रखी और हॉकी में अपने जीवन को चुना। उस समय लड़कियों के लिए खेलों में आगे बढ़ना आसान नहीं था, लेकिन सबा ने हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास से किया।
1: सबा अंजुम ने अपनी प्रारंभिक हॉकी शिक्षा प्रसिद्ध हॉकी प्रशिक्षक जो है तनवीर अकील्स के मार्गदर्शन में प्राप्त की। उनकी प्रतिभा जल्द ही सबके सामने आने लगी और कम उम्र में ही उन्होंने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में स्थान बनाया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त किया। साल 2002 में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। मैनचेस्टर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में वे भारतीय महिला हॉकी टीम की सबसे युवा खिलाड़ी थी। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इस उपलब्धि ने न केवल भारतीय महिला हॉकी को नई पहचान दी बल्कि सबा अंजुम को भी देश भर में लोकप्रिय बना दिया।
0: अपने करियर के दौरान उन्होंने एशियाई खेलों, एशियाई कप और जूनियर विश्व कप और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपनी तेज गति, शानदार ड्रिबलिंग और आक्रामक खेल शैली के कारण वे टीम की महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक मानी जाती थी। उन्होंने लगभग एक दशक तक भारतीय महिला हॉकी टीम में अपनी सेवाएँ दी और अनेक महत्वपूर्ण जीतों में अपना योगदान दिया।
1: सबा अंजुम की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उन्हें खेल जगत के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद वर्ष 2015 में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का प्रतीक है बल्कि भारतीय महिला खेलों के बढ़ते महत्व का भी प्रमाण है। खेल के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा और प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में कार्यरत हैं और युवाओं के खेलों के प्रति उनका प्रेरित करने का आज भी जो जर्नी है वो जारी है और बहुत ही उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य भी किया है।
0: सबा अंजुम की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम किसी लक्ष्य की ओर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो वो कभी असंभव नहीं रहता। उन्होंने यह साबित किया कि छोटे शहरों और साधारण परिवार से आने वाली बेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहरा सकती है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ आज का दिन जो है वो बहुत खास है चिन्मय, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसीलिए अब हम बात करेंगे आज के दिन 1968 में जन्मी विमेंस बॉक्सिंग की एक ऐसी लेजेंड की जिन्होंने इस खेल को नई पहचान दिलाई। जी हाँ, क्रिस्टी मार्टिन, जिन्हें दुनिया भर में द कोल माइनर्स डॉटर और महिला मुक्केबाजी की पायनियर के रूप में जाना जाता है।
0: वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में जन्मी क्रिस्टी मार्टिन ने उस दौर में बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया और जब यह खेल मुख्य रूप से पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन क्रिस्टी ने अपने डिटर्मिनेशन, करेज और फाइटिंग स्पिरिट से इस सोच को बदल दिया।
1: 1990 के दशक में क्रिस्टी मार्टिन ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में लगातार शानदार प्रदर्शन किया। उनकी एग्रेसिव स्टाइल और नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उन्हें फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। वर्ष 1996 में उनका मुकाबला माइक टायसन के साथ हुआ और जो कि एक बड़े बॉक्सिंग इवेंट में शामिल किया गया। यह विमेंस बॉक्सिंग के इतिहास में एक लैंडमार्क मोमेंट था क्योंकि पहली बार किसी महिला बॉक्सर को इतनी बड़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता मिली थी। क्रिस्टी मार्टिन ने अपने करियर में कई चैंपियनशिप्स भी जीती और दुनिया को दिखाया कि विमेन एथलीट्स जो हैं भी बॉक्सिंग रिंग में उतरना चाहती हैं और उनकी ताकत, स्किल और पैशन के साथ मुकाबला कर सकती हैं जितना कोई और खिलाड़ी कर सकता है।
0: लेकिन उनकी जर्नी केवल सक्सेस की कहानी नहीं है, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई चैलेंजेस का सामना किया। घरेलू हिंसा जैसी कठिन परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने न केवल खुद को संभाला बल्कि लाखों महिलाओं के लिए करेज और रेसिफेंस की मिसाल बन गई।
1: आज क्रिस्टी मार्टिन सिर्फ एक बॉक्सर नहीं बल्कि एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ और परसीवरेंस का एक प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन सबसे ज़रूरी है।
0: हम क्रिस्टी मार्टिन को उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स के लिए सैल्यूट करते हैं। उनकी जर्नी आगे वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेंगी।
1: और अब दे देते हैं हम आपको स्पोर्ट्स अपडेट। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आज से इंग्लैंड और वेल्स में आगाज हो चुका है। इस बार टूर्नामेंट में 12 टीम्स हिस्सा ले रही हैं और भारत अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा।
0: बिल्कुल, इसी के साथ भारतीय खेल जगत के लिए एक दुखद समाचार भी है। दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 ईयर्स की एज में निधन हो गया है। उन्होंने भारत को कई बार अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाकर ओलंपिक पदक विजेता मनु भास्कर के कोच के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: साथ ही क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर में

0: न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो फीफा विश्व कप 2026 शुरू हो चुका है। मेजबान मैक्सिको ने उद्घाटन मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मैच में 3 रेड कार्ड भी देखने को मिले जिससे मुकाबला काफी चर्चित रहा।
1: इसी के साथ अब लेते हैं आपसे विदा। मैं था आज आपके साथ आपका दोस्त चन्मय मनारिया, मेरे साथ थी वैदेही। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास

0: और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र आईटीआई परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के आईटीआई तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत एआई मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत एआई मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की एआई यात्रा में महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

धुरंधर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें मधुमति बागची और जैस्मिन सैंडल की थी और ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। आवाज़ें हैं आस्था गिल, सचिन संघवी और जिगर की, और इस गीत को हमने आपके लिए चुना है फिल्म स्त्री से।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म इश्क ज़ादे से। आवाज़ से विशाल ददलानी और सुनिधि चौहान की। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बेशरम। आवाज़ें हैं अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नंदिनी शीकर और साथियों की आवाजों में गाए इस गीत एजेंट विनोद के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं और इस समय शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात शाम 6:40 पर होगी जिले की चिट्ठी, उसके बाद शाम 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी नजर आ रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण के आधारशिला बताया है। आज देश भर में महिला नेतृत्व वाले विकास के सकारात्मक परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियाँ महिलाओं को सम्मान देने और सशक्तिकरण के लिए है। इससे महिलाएं आज विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और नवाचार के क्षेत्रों में नई उड़ान भर रही हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में भी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं।
1: प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में हुई इस कार्यशाला में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने किसानों से कहा कि वे रसायन मुक्त अनाज तैयार करें, इस प्रकार के अनाज से कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है। गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती के कारण आज देश भर में खेतों की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन निचले स्तर पर पहुंचना चिंताजनक है। उन्होंने सूक्ष्म जीव और मित्र कीट द्वारा मिट्टी को मुलायम करने और उर्वरकता बढ़ाने की पद्धति पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों ने पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग जैसे प्राकृतिक खेती के तरीकों से मानव और मिट्टी दोनों की सेहत का ध्यान रखा है, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती माता को जहरीले रसायन और कीटनाशकों से नुकसान होता है।
3: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी, वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें ई डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छांट करके।

0: पर डाल देते थे, चार दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब दो ढाई फीट का तीन फीट का हो जाता था तो हैरों से हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
1: बूंदी जिले की केशव राय पाटन, तालेड़ा और हिंदोली पंचायत समितियों में कामकाज में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर बीडीओ सहित 11 कामकाज अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर ये व्यापक कार्रवाई की गई। इन ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ 16 सीसीए के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि श्री दिलावर ने हाल ही में इन पंचायतों का औचक निरीक्षण किया था। नीट यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा की अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यह बदलाव करते हुए बताया कि अब परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक रहेगा। इधर राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 का आयोजन इस साल 6 सितंबर को किया जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से ये परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 14 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि इस बार ये परीक्षा 35 विषयों में आयोजित होगी। इसमें राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, फारसी और उर्दू 5 नए विषय शामिल किए गए हैं। प्रदेश में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। इनके जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगम तरीके से दिया जाएगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों के माध्यम से मौके पर ही विभिन्न विभागों से जुड़े काम किए जाएंगे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को दी जा रही सुविधाओं का फीडबैक लिया और लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बैरवा आज जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्ययोजना क्रियान्विति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रोत्साहन राशि के साथ आवश्यक उपकरण भी देने को कहा। डॉ. बैरवा ने लोगों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों की नियमित फिटनेस जांच करवाने और चालकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर भी जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने युवा पीढ़ी से हर तरह के नशे से दूर रहने की अपील की है। श्री अठावले आज जयपुर में नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा को देश के विकास में लगाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नशे से समाज के हर तबके को नुकसान होता है। उन्होंने समारोह में सभी लोगों से अपने आसपास मौजूद नशा करने वालों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। जातिगत जनगणना को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की।
2: माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। तब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है, भी जानकारी मिलेगी। और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का, SC ST को OBC को फायदा मिला है, और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
1: आज बाल श्रम निषेध दिवस है।

0: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। देश में भी कृषि, होटल उद्योग, ईंट भट्टों, पटाखा निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में लाखों बच्चे काम कर रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक समस्या और सामाजिक विषमता को जिम्मेदार बताया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर करौली में बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान में 12 जुलाई तक सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां होगी। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने और बाल विवाह की रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। उधर पाली के सुमेरपुर में एक बच्ची को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। और अब मौसम संबंधी जानकारी। राज्य में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली और हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर में आज ओले भी गिरे। उधर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव चली और गर्म रात्रि रही। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आंधी बारिश की गतिविधियों में आज से बढ़ोतरी के आसार हैं। बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभागों के कुछ भाग में गरज के साथ मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंधी बारिश की गतिविधियां 16 जून तक जारी रह सकती हैं।
1: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 1-2 दिन पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: राजधानी जयपुर में किराए पर वाहन उपलब्ध करवाने वाली रेंट कैब और बाइक रेंटल सेवाओं पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव पचार ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों के लिए किराए के वाहनों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ये सख्ती की गई है। उन्होंने बताया कि कई व्यक्तियों और फर्मों की बगैर पंजीकरण के ही वाहन किराए पर देने की शिकायतें सामने आई हैं। श्री पचार ने बताया कि किराए पर वाहन देने के लिए परिवहन विभाग का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही सभी रेंटल फर्मों को अपने कार्मिकों का पुलिस सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिला आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया। और प्रदेश में मौसम का दोहरा मिजाज, पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात, वहीं पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। सीकर अपनी हवेलियों, बाटिक कला और धार्मिक स्थलों के साथ साथ शौर्य के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। इसी पहचान के साथ जिले की चिट्ठी की शुरुआत करते हैं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने गौरव सेनानियों, वीरांगनाओं और बलिदानी योद्धाओं के आश्रितों से अपने सैन्य और नागरिक दस्तावेजों की जांच कराने का आग्रह किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल बिजेंद्र सिंह महला ने बताया कि नाम, नाम की वर्तनी, जन्म तिथि तथा पारिवारिक विवरण में अंतर होने के कारण पारिवारिक पेंशन, बच्चों की शैक्षणिक सुविधाओं और अन्य देय लाभों में कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जन आधार, राशन कार्ड तथा अन्य अभिलेखों का मिलान करने और

0: आवश्यकता होने पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत कर संशोधन करवाने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल पीड़ित दिवस के अवसर पर सीकर के राजकीय संप्रेषण और किशोर गृह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाल श्रम, मानव तस्करी और शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में किशोरों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीवन जीने तथा भविष्य में अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे स्टेशन, बड़ा तालाब, मारू पार्क सहित कई स्थानों पर लोगों को तंबाकू और नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। स्काउट गाइड के सदस्यों ने नृत्य, नाटिका, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर फतेहपुर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महावारी स्वच्छता, स्वास्थ्य प्रबंधन और एनीमिया की रोकथाम की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि महावारी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इससे जुड़े भ्रम तथा सामाजिक वर्जनाओं को दूर करना आवश्यक है। महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित भोजन लेने और आयरन युक्त आहार अपनाने की सलाह दी गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में शहरी निकायों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से उड़ान 10 समर कैंप में महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। कैंप में हस्तकला, कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई, योग, नृत्य और अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, हेल्पलाइन सेवाओं, लाडो प्रोत्साहन योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। संबंधित व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आमजन से कपड़े और जूट के थैलों का उपयोग करने की अपील की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत नगर परिषद द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। जयपुर रोड से बाईपास तक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए। नगर परिषद ने व्यापारियों और संस्थानों से सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने तथा नियमों की पालना करने का आग्रह किया है। सीकर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार लारला 12 साल माय महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू जयपुर माय राज्य स्तरीय कार्यशाला राखी जी। राज्य सरकार सड़का माथे हिफाजत न जन आंदोलन बनावन सारू भेड़ी जिम्मेदारी सागे काम करन री अपील कीनी। और प्रदेश उगनी हल्का माय गरज चमक सागे बरसात, आतुणी हल्का माय लू रो कोप। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि केंद्र सरकार लारला 12 साल माय देश बनावन रा काम माय महिलावारी पूरा बूता सागे भागीदारी रो एहसास करावन बाबत अनुकूल वातावरण तैयार किन्नो है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो कि हर हल्का माय महिलावारी मौजूदगी नजर आ रही है। पेश है समाचार कक्षों सलेहा काजीरी रपट।
2: प्रधानमंत्री संस्कृत श्लोक रो जिक्र करता थका महिलावा ने देश बनावण री नींव बताई।

0: आज देशभर में महिलावारी अगुवाई में विकास रा बेहतर नतीजा साफ निजर आ रहा है। स्वयं सहायता समूहारे जरिए गावाई हलकारी महिलावा ने ई माली तौरू खुदरे पाण उबी करी जा रही है और केंद्र सरकार री नीतियां महिलावा रो मान बधावण और वा ने मजबूत बनावण सारू है। इणु महिलावा विज्ञान अंतरिक्ष खेल और नवाचारा रा हलका माए खूब आगे बढ़ रही है। केंद्र माए एनडीए रा राजरा 12 साल पूरा वेवन रा सिलसिला माए राज्य माई 3 दिन ताई प्रदर्शनियां लगाई जा रही है।
1: केंद्र सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक निवेश प्लेटफॉर्म रो प्रचार करता था का बतावन वाला वीडियो ने फर्जी बतायो है। पत्र सूचना कार्यालय रिफैक्ट चेक इकाई वीडियो ने गलत बताता था का कहो का इनमाए 22,000 रुपया रा निवेश मा था। रोजीना 80,000 और हर महीना 24,00,000 रुपया मिलन रो दावो करीचियो है। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई रे मुजब ओ वीडियो एआईयू बनाईचियो है। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू आज जयपुर माए प्रदेश स्तर री प्राकृतिक खेती कार्यशाला और मल्लखंब प्रदर्शन राखीचियो। इन माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानाओं कीड़ा मारण री रासायनिक दवाइयां कम काम लेवण और प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। श्री बागड़े किसानों रसायन काम लिया बगैर अनाज उपजार जनता ने बीमारियां बचावण माए मदद करण री अरज कीनी। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो का किसान पंचगव्य जीवामृत बीजामृत और मल्चिंग सरीखा प्राकृतिक खेती रा तरीकाओं इंसान और मिट्टी दोनों री सेहत रो ध्यान रखे है। मुख्यमंत्री कहो के मौजूदा दौर माए रासायनिक खाद मोटी तादाद माए काम लेवणु मिट्टी रो स्वास्थ्य खराब भी है।
2: उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी वो भी काम में आती है, कुछ हम बनाते भी हैं। जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें ई डाल करके उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेड़ छांट करके उस पर डाल देते थे, चार दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे और जब 2.5 फीट का 3 फीट का हो जाता था तो हैरों से हर से उसको जोत देते थे तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी।
1: श्री शर्मा कहो कि किसाना री बरकत सारू राज्य सरकार पानी और बिजली री उपलब्धता तय करण री विगतवार योजना बनाई है। ई मौके गुजरात रा राज्यपाल आचार्य देवव्रत कहो कि रासायनिक खेती रा कारण खेता माए मिट्टी माए ऑर्गेनिक कार्बन घणो कम वेक्यो है। बूंदी जिला री केशव राय पाटन तालेड़ा और हिंडोली पंचायत समितियां रा कामकाज माए लापरवाही रा आरोप माए बीडीओ और 11 ग्राम विकास अधिकारियां ने मुअत्तल कर दिया चिया है। आ ग्राम विकास अधिकारियां रे खिलाफ 16 CCA रातेत विभागीय कार्रवाई शुरू करण रा हुक्म दिया चिया है। प्रदेश माए आज शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर शुरू किया। 15 जुलाई ताई चालन वाला आ शिविरां रे जरिए लोगां ने न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां और सेवावां रो फायदो आसानी दियो जा रियो है और न्यारा न्यारा महकमाओं जुड़िया काम मौके ही निपटाया जा रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माए शहरी सेवा शिविर री शुरुआत कीनी। ई मौके वे लोगाओं शिविर माए मुहैया कराया जा रहा सुविधा नी जानकारी लीनी और जमीरा पट्टा दीना। मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा माए अब विद्यार्थियों ने 15 मिनट बत्ता मिलेला। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए रे मुजब अब 195 मिनट री आ परीक्षा दोपहर पाछे 2 बजाऊं सिंजा 5:15 ताई ली जावेला। दूजीगानी कोटा विश्वविद्यालय री ओरू राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सैट 2026 इस साल 6 सितंबर न ली जावेला। इसारू 14 जून और 15 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकाओं अर्जी दी जा सकेला। विश्वविद्यालय रा कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत बतायो कि इन दफा आ परीक्षा राजस्थानी सिंधी पंजाबी फारसी और उर्दू समेत 35 विषयां माए ली जावेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सड़का माथे हिफाजत न जनता रो आंदोलन बनावण सारू सगलाऊ

0: जिम्मेदारी सागर काम करण बाबत कहो है। वह आज जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल री मीटिंग में बोल रहा है। उप मुख्यमंत्री सड़का माथा हिफाजत रा जतन असरदार तरीकाओं करण सड़क हादसा रे जदमाए आवन वाला ने तुरंत मदद और बेहतर इलाज मुहैया करावन राय हुक्म दीना। वह सड़क सुरक्षा मित्रा ने प्रोत्साहन राशि सागर जरूरी साजो सामान देवन बाबती कहो। डॉक्टर बैरवा जनता सारू आसान और आरामदायक सफर तय करण सारू बसारी फिटनेस जांच करावण और बस चलावण वाला रा स्वास्थ्य री जांच करावण माथे जोर दीनो। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले नौजवानों नशो नी करण बाबत कहो है। वह आज जयपुर में नशा मुक्त भारत जन चेतना सम्मेलन में बोल रहा है। अठावले नौजवानों वारी ताकत देश बनावण माए लगावण सारू कहो। केंद्रीय राज्य मंत्री कहो कि नशाओं समाज रा हर तबका ने नुकसान फै है। वह सगड़ा लोगों ने आरे सारे रा नशो करण वाला ने नशो छोड़वा सारू प्रेरित करण बाबत कहो। मंत्री जाति रा आधार उन जनगणना ने देश सारू चोखी बताई।
1: माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने हर जातवार जनगणना करने का निर्णय लिया है। तब हर जाति का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन, एक जानकारी मिलेगी। दूसरा, हर फैमिली की क्या डिफिकल्टी है भी जानकारी मिलेगी, और कौन से फैमिली को रिजर्वेशन का एससी एसटी को ओबीसी को फायदा मिला है, और उनको किनके पास खेती है, किनके पास बिजनेस है, ये सब जानकारी मिलने के बाद हर जाति को न्याय देने के लिए सरकार को एक क्लियर एजेंडा उनके सामने आएगा। तो ये भी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है।
0: श्री अठावले कहो कि नशा मुक्ति केंद्र खोलण वाला ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय री ओर उमाली मदद दी जावेला। वह एक गैर सरकारी संस्थान का नींव राखी जिया नागरिक और दिव्यांग जन सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके वह कहो कि मंत्रालय दिव्यांग जन ने जरूरी साजो सामान मुहैया करावण तय कीनो है। आज बाल श्रम निषेध दिवस मनाईचियो। इस मौके करौली में बैक टू स्कूल अभियान शुरू करीचियो। इन तेत 12 जुलाई ताई सामुदायिक जागरूकताओं जुड़िया कार्यक्रम रख्या जावेला। इस आगे स्कूल छोड़ चुक्या बच्चा ने उजू भणाई लिखाई उन जोड़बा और बालपना माए ब्याह न रोकण माथे जोर दियो चियो। जिला रा 30 गांवां रा सर्वे माए करीब 650 टाबरियां रे स्कूल छोड़बा और 600 टाबरियां रो बालपना माए ब्याह वेवण री शंका री ठापड़ी। पाली जिला रा सुमेरपुर में एक बच्ची ने मजूरी आजाद कराई ची। रब मौसम, राज्य रा उगनी हल्का माए लारला 24 घंटा माए बादलों री गाज और बीजलियां री चमक सागे जोरदार बायरो बाजो और बिरखा फी। श्री गंगानगर माए आज ओला पड़िया। दूजी कानी आतूणी हल्का माए कठे कठे लू बाजी और रात्रि बगती तेज गर्मी रही। प्रदेश माए घनखर ठोड़ा पारो 40-43 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो चाटियो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में 16 जून ताई कठे कठे बादलों री गाज सागे तेज बारिश रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले एक दो दिन पश्चिमी राजस्थान में एक प्रयोग की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: एशियाई खेलों में सोनारो तमगो जीतने वाला दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा देवलोक फेंकिया है। 49 साल रा राणा भारत रा निशानेबाजा ने पिस्तौल चलावण री सिखावण देवण माए लाग्योड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेता निशानेबाज जसपाल राणा रा देवलोक फेवण पर गहरो शोक जतायो है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जसपाल राणा ने चैंपियन एथलीट बताता था का कहो कि हमारा योगदान ने हमेशा याद रखियो जावेला। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकार लारला 12 साल में महिला आधारित विकास सारू माहौल बनायो। प्राकृतिक और जैविक खेती ने बढ़ावो देवन सारू जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला रखी छी। राज्य सरकार सड़का मथ हिफाजत न जन आंदोलन बनावन सारू भेड़ी जिम्मेदारी सागे काम करन री अपील कीनी। और प्रदेश रा उगनी हलका माए गरज चमक सागे बरसात आतुनी हलका माए लू रो कोप। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाई बहनों का चहेता कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम अनुश्री भाई साहब, राम राम।
1: राम राम नानू भाई, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला हगला ही किसान भाई बहना ने अपनो
1: राम
0: राम राम
1: राम
0: सा।
1: सा।
0: देखो सा, चौपाल रो समय भयो और आपा देखो चौपाल में आई गया हाँ। और यदि आपा चौपाल में आया हाँ तो किसान भाई बहना रे वाते आपा बात बात री जानकारी लामा, लारे लारे वनारो मनोरंजन करवा वाते राजस्थानी लोकगीत भी आपा लेने आवा हाँ सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो, आज आपा अपने किसान भाइयों वास्ते सबू पहली जानकारी लाया हाँ कि खरीफ रोई फसल जो है वणी रे बोवाऊ पहली आपने खेत रो प्रबंधन किस तरह करनो। देखो, खरीफ री फसल री बात करा तो जिसान है धान है, मक्का है, बाजरा है, कपास है, सोयाबीन है, अनारी बम्पर पैदावार रे वास्ते आपने मानसून आवाऊ पहली सबू महत्वपूर्ण समय यो वे। अगर अणि समय में आपा खेत रो प्रबंधन सही तरीकों कर ला तो कीटा जो फसल वे वणी में कीटों, बीमारियों और खरपतवारी जो समस्या है वणी आपाने समस्या रो समाधान वे जावे। तो अणि वास्ते खरीफ रो सीजन शुरुआत पहली आपाने किसान भाइया ने कसिया कसिया मुख्य काम करना छावे अंडो आपा पूरी जानकारी आज आपने किसान भाइया ने देवा सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा हूँ अनुश्री भाई साहब। यदि देखो आप बात कर रहे हैं खरीफ फसल पहला खेत रे प्रबंधन री, तो सबसे पहला बात आवे मिट्टी रे जांच री। यदि देखो आप नई फसल वही रहा हाँ अपने खेत में, तो सबसे पहला देखो आपने मिट्टी री जांच जरूर करवानी चाहे, क्योंकि मिट्टी में आपा सब जाना कि नरे हरा पोषक तत्व जिस तरह के नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, ये नरे हरा पोषक तत्व जो वे, तो अगर आप मिट्टी री जांच आप प्रयोगशाला में करावा तो अणु अपने यो पतो चाले कि अपनी फसल जो वायरा है खेत में वणी खेत में कणी जो पोषक तत्व है वनडी मात्रा अधिक है और कणी पोषक तत्व री मात्रा कम है। तो वणु कही वेगा कि आपने यो पतो चल जाएगा कि आपने खेत में जो फसल वहीरा वन में कणी खाद ने आपने ज़्यादा डालना और कण ने कम डालना है, जणो आपनो पयो भी मचेगा और आपने खेत री जो मिट्टी है वंडी सेहत में भी सुधार आएगा।
1: देखो सा, खेत री मिट्टी री आपा जांच करवेला वटा बाद आपा खेत रो जो अगलो काम वे वो है खेत री जुताई रो। तो खेत री जुताई आपाने करनी है तो देखो आपाने यो ध्यान रखनो है कि खेत री जुताई जो है आपाने घेरी करनी है। अनिर वास्ते कही है कि आपाने मिट्टी पलटवा वालो जो हल वे एम बी प्लाऊ वणियों कही है कि खेत री आपाने घेरी जुताई कर लेनी है और पच्चे वनी ने थोड़ा दिन रे वास्ते धूप में खुल्लो छोड़ देना है। क्योंकि खुल्लो छोड़वो कई वेला कि मिट्टी में छुपिया तक का जो हानिकारक कीड़ा वेला, अंडा वेला, लार्वा वेला, फंगस वेला वे तेज धूप रे कारण नष्ट हो जाला। अंडे लारे लारे खरपतवार रो भी खात्म हो जाला। देखो, बारहमासी खरपतवारी जो जड़ा है वे ऊपरे आई जावेला जो कही है कि जो धूप हो सूखी जावेला। और आगे आप बात करा जल संचय री।
0: बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ जेटे। देखो जल संचयन रे अगर आप बात करा तो गहरी जुताई करवाऊँ कही वेगा कि मिट्टी में देखो जल धारण री क्षमता बढ़ जावे, जणू की वर्का रो जो पानी है वो सीधो जमीन रे अंदर चलो जाएगा। और जेटे बात करा मेड़बंदी और खेत रे समतलीकरण री, तो मेड़बंदी जिस तरह के आप जाना है कि खेत रे चारों तरफ जो आप मेड़ है वनने वणावा हाँ, और वनने अगर मजबूत और ऊंची बनावांगा तो अणु कही वेगा कि बारिश रो पानी खेतू बाणे नहीं जाएगा

0: और पानी रे लारे बेवा वाली जो उपजाऊ मिट्टी है वह भी सुरक्षित रहेगा। क्यों भी क्यों है कि देखो खेत रो पानी खेत में और गांव रो पानी गांव में सा।
1: हाँ जी, बात ऐसा देखो, समतलीकरण अगर खेत उबड़ खाबड़ है तो आपने यो ध्यान रखना है कि लेजर लैंड लेवलर री मदद उन्हें आपा समतल करे दा। जो कही है कि समतल खेत में पानी और खाद हंगला पौधा में समान मात्रा मिले है। और देखो, अभी खाद री बात करी रहा हाँ, तो जैविक और कंपोस्ट खाद आपने डालनो है। तो जुताई रे बाद में आपने आखिरी कल्टीवेटर चलावो, पहली खेत में अच्छी तरह सड़ी तकी जो गोबर री खाद वेवे या वर्मी कंपोस्ट वेवे भी ने आपने मिलाई देनो छावे। और लारे लारे देखो, यह बात करा तो इमने कही है कि केंचुआरो खाद भी आपने इमें मिलानो है, और लगभग 4-5 टन प्रति एकड़ आपने यो लेनो है।
0: तो देखो जेटा आप बात की थी खेत री गहरी जुताई री और लारे लारे जैविक खाद और कंपोस्ट अगर आप खेत में डाल दा तो ये अणु कही वेगा कि ये मिट्टी री जो संरचना है अण में सुधार करे और पौधा जो है वो लंबा टाइम तक देखो पोषण दे। अंडे लारे ही अगर आप मित्र फंगस भी अण में डाला तो वणु कही वेगा कि अपनी फसला में जो फंगस जनित बीमारियां वे वणा ने भी यो बचावे है।
1: देखो सा, खेत री जुताई भी वेगी आपा खाद भी ना कि दो, लेकिन अबे सब मोटो काम जो है और सब महत्वपूर्ण काम है वो है उन्नत बीजारो चयन और बीजो उपचार। सही किस्म रा बीज अगर आपा चुना तो आपाने फायदो वेवे। तो हमेशा आपाने अपने क्षेत्र री जो जलवायु है, पानी री उपलब्धता है, वंडे आधार माते प्रमाणित और उन्नत किस्म रा जो बीज वे वनारो चुनाव करनो है, और अंडे लारे लारे आपाने बीजो उपचार भी करनो छावे।
0: जटे देखो आप बीजोपचार की बात कर रहे हो तो वावणियों पहला बीजा ने फफूंद नाशक जिस तरह बावस्टिन या थायरम या पर जैविक इंसेक्टिसाइड जिस तरह के राइजोबियम या एजोटोबैक्टर कल्चर है अणु उपचारित करने देखो अपने वावणो चावे। क्योंकि अणु कही वेगा कि शुरुआती अवस्था में जो पौधा बीमार है भी बीमार नहीं पड़ेगा सा।
1: और एक जरूरी सलाह आपा और देवा आपन किसान भाई ने कि अगर आपके पास में समय है और खेत खाली है तो मानसून ठीक पहले हरी खाद जैसे उनकी ढेंचा या सनैरी आपने बुवाई कर देनी छावे। चनान फसल 40-45 दिन री वे जावे तो अणी ने रोटावेटर रू आपने मिट्टी पलटी देनी। तो यो कही है कि खेत ने भारी मात्रा में प्राकृतिक नाइट्रोजन आपने मिल जावे है।
0: तो देखो अनुश्री भाई साहब खरीफ फसल रे पूर्व खेत प्रबंधन में अगर किसान भाई देखो मिट्टी री जांच कराएगा, खेत री गहरी जुताई करेगा, मेड़बंदी और खेत रो समतलीकरण करने, जैविक खाद और कंपोस्ट खाद अगर सही टाइम पे डाल देगा और बीजा ने वावों पहला अगर बीजोपचार करेगा तो अणि खरीफ री फसल भी अच्छी आमद ले सकेगा।
1: बिल्कुल नानू भाई, और अच्छी आमद वेला तो आपने किसान भाई ने अच्छो गर्मी ने अच्छी खुशियाँ आवेला, और खुशियाँ आवेला तो आप जानो सो कि अपनो मन करे कि गीत संगीत सुना और आनंद बनावा। तो आप मारो इशारो समझ रहे हो सा।
0: बिल्कुल सा, तो होना यो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो अनुश्री भाई सा कार्यक्रम में होने आप आई हो एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत।
3: बिल्कुल सा गीत सुनिन पाचा आया हाँ कार्यक्रम में और अबे देखो सरकार रा 12 वर्ष पूर्ण व्यवहार उपलक्ष में एक विशेष कार्यक्रम सुना सा।
4: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
5: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: धन्यवाद आपका।
5: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
6: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध शक्तिशाली आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
5: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव तो

0: दो साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
1: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा, अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेकर बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
0: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
1: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
0: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
1: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
0: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
1: देखिए, एक तो संकट है
0: जिसको इतिहास याद रखेगा,
1: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे

0: नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी। मन के
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है।
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही, पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
0: हकीकत तो ये जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
1: सर लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल।

0: किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों और अपील की, उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए, कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूं और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान न पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अलनीनो की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण हैं, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप

0: दवाई डालिए, ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हों, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुम्बकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूं, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूं, और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरेवेती चरेवेती चरेवेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक, हम सबको भी एक सीख दी चरेवेती चरेवेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थीं रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के,

0: पूरी आधुनिकता के साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
1: धन्यवाद।
0: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
0: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और बोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
0: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेनजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे, और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी

0: जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली, जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: तो देखो अनुश्री भाई सा कार्यक्रम में हुनियो सरकार रे 12 वर्ष पूर्ण व्यवहार उपलक्ष में यो विशेष कार्यक्रम।
4: बिल्कुल सा कार्यक्रम सुनियो आपा और अबे आपा ने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और सुना एक बढ़िया सो राजस्थानी गीत।

0: तो देखो अनुश्री भाई साहब, यो तो होनी प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सा
0: और देखो कार्यक्रम में देखो अबे घड़ी री आड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवारो अपनो टेम वेरो तो पाछा मिलवारे वादारे साथ आज्ञा दो नानू भाई और
1: अनुश्री राठौर ने
0: जय जवान
1: जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों का चहेता कार्यक्रम खेती और घर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। और कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति अभी आपने सुनी आवाजें आशा भोसले और आरडी बर्मन की। ये गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म कारवां से। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर आवाजें हैं आशा भोसले की। और आशा भोसले का साथ दिया है इस गीत में मोहम्मद रफ़ी ने। और ये गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म तीसरी मंजिल से।

उषा उत्तुफ, बप्पी लहरी और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म डिस्को डांसर का। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अगली प्रस्तुति। आवाज़ें हैं अमित कुमार, कंचन और साथियों की फिल्म कुर्बानी।

अलका याग्निक और इला अलून की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म खलनायक से। और फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अब हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है झील के उस पार, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आर डी बर्मन की आवाज़ में शोले फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें,
3: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में न्यूज़ एट 9 हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार श्रद्धा

श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभर

0: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13

0: प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई

0: कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: चंदन दास की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल ड्रम्स ऑफ इंडिया बाय उस्ताद जाकिर हुसैन।
2: शुरुआत करेंगे इसकी। Da da tin na da da tin na da da tin na da da tin na da da tin na da da tin na da da tin na da da tin na da da tin na da da tin na da da tin na बोल कैसे खुलते हैं? Da da ti da ga na da ga tin ga da ga na da ga tin da ti da ga na da ga tin ga na da da tin na da da tin na da da tin na ga da ti da ga na da ga tin da ga na da ga tin da ti da ga na da ga tin ga na da da tin na da da tin na da da tin na da da tin na

अब हम तीन ताल में खंड जाति तकसीम करेंगे कि जो हर मात्रा में पांच मात्रा आएगा, एक मात्रा में ए दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे थे हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल ड्रम्स ऑफ इंडिया बाय उस्ताद जाकिर हुसैन।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह सफर अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा

0: के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is